सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 9, तदनुसार 30 जून 2026 सुबह के 5:58 और 40 सेकंड होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। कुछ ही सेकंड्स में सुबह की 6 बजेंगे और 6 बजते ही हिंदी में समाचार आप सभी सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हिंदी में समाचार के बाद आइए करें चिंतन। विषय है आम मनुष्य और महापुरुष।
1: आम मनुष्य व महापुरुष में एक अंतर होता है कि महापुरुष अपने जीवन में घटित घटनाओं व छोटी छोटी बातों से सबक लेकर अपना जीवन सुधारते रहते हैं। एक बार जो भूल हो जाए उसे वे दोबारा करने की गलती नहीं करते। इस प्रकार निरंतर आत्म सुधार की प्रक्रिया द्वारा वे आम पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन ऐसे ही घटनाओं से भरा हुआ है। बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करते समय एक बार गांधी जी को ऐसा आभास हुआ कि वे जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपने प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना शुरू कर दिया तथा छोटे से छोटे खर्च भी, बस का किराया, अखबार का खर्च, डाक खर्च, चाय पान का खर्च इत्यादि नोट करने लगे तथा रात्रि को सोने से पहले इसे वे एक खाते में दर्ज करते। इस प्रकार वे अपने गैर जरूरी खर्च पर नियंत्रण पाने में सफल हो गए। उनकी ये आदत आजीवन बनी रही तथा इसी के फलस्वरूप बड़े बड़े आंदोलनों के संचालन के समय भी वे जहां लाखों रुपए खर्च का हिसाब किताब रखना पड़ता था, आय व्यय का समुचित संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहते थे। मित व्ययिता एक महान गुण है और जीवन को सुखमय बनाने के लिए अति आवश्यक। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर की प्राचीन उक्ति इस बात पर पूरी तरह लागू होती है। गांधी जी ने तो अपने विद्यार्थी जीवन में ही इस गुण की महानता को पहचान कर इसे अपना लिया था। लंदन में शिक्षा प्राप्त करते समय अपने खर्च का हिसाब किताब देखकर उन्होंने इसे आधा करने की ठानी तथा अपनी योजना को बड़े सुंदर ढंग से क्रियान्वित किया। वे एक परिवार के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में रहते थे तथा प्रति सप्ताह पैसे देते थे। उन्होंने देखा कि शिष्टाचार के नाते उस परिवार के सदस्यों को उन्हें कभी कभी होटल में खिलाने ले जाना पड़ता था तथा उनके साथ कई पार्टियों पर भी जाना पड़ता था। इन पर काफी खर्च होता था तथा साप्ताहिक बिल में कटौती संभव नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस झूठे मान सम्मान को तिलांजलि देकर अपना खर्च कम करना ही उचित है। उन्होंने उस परिवार के साथ रहना छोड़कर एक छोटे कमरे की तलाश की। इस प्रकार न केवल उनके साप्ताहिक बिल में कमी आई वरन साथ ही टैक्सी पर होने वाला खर्च भी बचने लगा। इस तरह अपने दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा वे खर्च को पहले से आधा करने में सफल हो गए। कहते हैं जब मनुष्य एक सद्गुण सच्चे मन से अपनाने का प्रयास करता है तो कई अन्य सद्गुण स्वतः उस सद्गुण के साथ चले आते हैं। गांधी जी को इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। जब मितव्ययिता की चेष्टा में उन्होंने पाया कि उन्हें सैर की अच्छी आदत भी पड़ रही है, उन्होंने जब अकेले कमरा लेकर रहना शुरू किया तो सोचा इस प्रकार प्रतिदिन 8-10 मील पैदल चलने की आदत भी उन्हें सहज ही पड़ गई तथा इसी आदत का यह परिणाम था कि इंग्लैंड प्रवास के दौरान न केवल उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ वरन साथ ही एक सुडौल व मजबूत शरीर भी स्वतः तैयार हो गया। समय के सदुपयोग की शिक्षा गांधी जी ने लंदन प्रवास के दौरान अपने ही जीवन से सीखी। संस्कृत में समय की सदुपयोगिता पर एक सुंदर श्लोक है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात बाल्यकाल में विद्या नहीं अर्जन किया, यौवन में धन न कमाया, प्रौढ़ावस्था में ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वृद्धावस्था में क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। पर गांधी जी ने समय पर ही समय के सदुपयोग का सबक सीख लिया था। जब वे अकेले रहने लगे तो उन्होंने पाया कि उनके पास काफी समय बेकार बच जाता है। उन्होंने इस समय का सदुपयोग किया लैटिन व फ्रेंच भाषाएं सीखकर। इस प्रकार बैरिस्ट्री की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मात्र समय के सदुपयोग द्वारा 2 अतिरिक्त भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया।
0: आम मनुष्य और महापुरुष, इस विषय पर आज हम सभी चिंतन कर रहे थे। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 हुए और ये

समय भक्ति संगीत के कार्यक्रम का है जिसका नाम है वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हरिओम शरण के भजन के साथ कर रहे हैं। इस भजन को सुनते ही मन रूपी संसार में आपके एक बात तैरती रहेगी। जीवन रूपी इस भवसागर को वही पार कर सकता है जो श्रद्धा और विश्वास की पतवार थाम ले। प्रभु का नाम ही वह सहारा है जो हर कठिनाई को सरल बना देता है।

जब मन निराशा से घिर जाए तब बजरंग बली का स्मरण नई शक्ति और नया उत्साह देता है। आज मंगलवार भी है तो उनका नाम लीजिए। नाम लेने से साहस, सेवा और विश्वास खुद ब खुद आपके अंदर चलने लगता है। शैलेश दुबे के स्वर में इस भजन को सुनते हुए आप यही आत्मसात करेंगे।

हनुमान जी का दरबार ही कुछ ऐसा दरबार है जहां खाली हाथ कोई नहीं लौटता। सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। भक्ति संगीत के कार्यक्रम बंद।

श्रोताओं, प्रभु का द्वार केवल मंदिर का द्वार नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और शरणागति का भी द्वार है। जो वहां झुकता है उसके जीवन में नई आशा का संचार होता है। यह अगला भजन गा रही है हरिओम शरण।

कार्यक्रम वंदना के आखिर में बस भजोरे मन, मनुष्य का सबसे बड़ा धन प्रभु का है स्मरण। तो आइए अपने मन को भक्ति में लगाकर जीवन को शांति, आनंद और सद्भाव से भर दें। भक्तिमय स्वर मोहम्मद रफी के।

मोहम्मद रफी के गाए इसी भक्तिमय भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट चैनल FM 102.1 MHz। श्रोताओं, 6:40 हुए।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरे की भांति हरे की कथा भी अनंत है।

श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी हम सभी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने से पहले कार्यक्रम विवरण। आज जिन कार्यक्रमों को आप प्रसारित होते हुए सुनेंगे और लाइव सुनेंगे उनके विवरण सुनिए। आज सुबह 7 बजे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा लोक रंग, भोजपुरी लोक गीतों का आनंद लीजिएगा इस कार्यक्रम में। 7:20 का समय है स्वास्थ्य वार्ता का।

भेंटवार्ता होगी। आज विषय होगा नव उम्र बच्चों में पीलिया रोग, कारण, लक्षण और उपचार। 7:30 का समय है गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत संगीत का। रोज की तरह ही सुबह 8 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। 8:30 का समय प्रादेशिक समाचार का होगा जो आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम रिले करेंगे। 8:45 पर आज सुबह मॉर्निंग मेलोडी सुनिएगा। सुबह 9 विविध भारती के कार्यक्रम होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 सुनिएगा हेलो हजारीबाग। हेलो हजारीबाग के बाद सुबह 11 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। 1:10 से आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे। और संध्या 4:30 पर एनसीआरटी का एपिसोड, अगला एपिसोड प्रायोजित कार्यक्रम हमारा ये सुनेंगे। संध्या 5 प्रादेशिक मुख्य समाचार होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:02 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी और 5:32 पर खेती बारी सुनेंगे। संध्या 6 प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा और 6:02 पर युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम सुनिएगा युववाणी। संध्या 6:30 पर आईसीसी विमेन्स 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के बीच पहले सेमीफाइनल मैच का द ओवल लंदन से आंखों देखा हाल होगा। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7 प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। पुनः 7:15 पर आईसीसी विमेन्स कप 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के बीच पहले सेमीफाइनल मैच का द ओवल लंदन से आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज एट 9 सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर यहीं से स्पॉटलाइट होगा और 9:30 से आईसीसी विमेन्स 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का द ओवल लंदन से आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो। रात्रि 10:45 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा। 11:10 पर रोज की तरह ही सभा का समापन करेंगे। तो ये थे वो कार्यक्रम जिन्हें रिले और प्रसारित होने हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे आप सभी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:55 बस होने ही को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

यह अगला भोजपुरी लोकगीत है जिसे मदन राय गा रहे हैं। लोक रंग सुनते रहिए आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

मदन रह के गए इस भोजपुरी लोकगीत के बाद ये भोजपुरी लोकगीत मुन्ना सिंह गा रही हैं। कार्यक्रम लोक रंग सुन रहे हैं आप सभी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

दीपाली सहाय से हम सभी लोक भज लोक गीत सुन रहे थे, और इसी भोजपुरी लोक गीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, जो है आपका ही FM 102.1 MHz। श्रोताओं, सुबह के 7:20 और ये समय स्वास्थ्य वार्ता इस कार्यक्रम का। आज स्वास्थ्य वार्ता में भेंट वार्ता सुनिए, विषय है नव उम्र बच्चों में पीलिया रोग, कारण, लक्षण और उपचार। भेंट वार्ताकार हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शहबाज आलम। इनसे हम सब के लिए बातचीत किया मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी ने। उससे पहले ये संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शहबाज आलम। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, 9 उम्र बच्चों में पीलिया रोग या जॉन्डिस के होने के क्या कारण हैं, ये किस तरह से बच्चों के शरीर को प्रभावित करता है और उसके क्या क्या नुकसान हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है, इस बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो डॉक्टर साहब, जॉन्डिस या पीलिया क्या है, इसके होने के क्या वजूहात
2: हैं? जॉन्डिस, जिसको हम आम भाषा में पीलिया भी कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं
1: जी,
2: उनके अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब वो टूटता है
1: जी,
2: या तो वो नेचुरल प्रोसेस प्राकृतिक भी हो सकता है और अप्राकृतिक वजह भी हो सकते हैं, जब वो टूटते हैं तो उनके टूटने के वजह टूटने से एक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसको हम बिलरुबिन बोलते हैं
1: जी, जी।
2: जो आमतौर पे हमारे शरीर में जो लीवर जो होता है, शरीर के अंदर का फैक्ट्री भी कह सकते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: वो उसको
1: बदन से
2: जी, जी, बिल्कुल जी, जी। वो बदन से इस बिलरुबिन को शरीर में जैसे यूरिन और स्टूल के जरिए बदन से बाहर कर देती है। जो कभी अगर किसी वजह से जो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं का टूटना अगर बढ़ गया
1: जी, जी,
2: या तो फिर आम जो नवजात शिशु होते हैं जिनका लीवर जो उतना मैच्योर नहीं होता है,
1: जी,
2: जो कि ग्रोइंग स्टेज में होता है
1: जी, जी, जी,
2: उस टूटे हुए हीमोग्लोबिन को हैंडल कर पाने में
1: या उसको
2: बदन से निकाल पाने में
1: जी, जी,
2: सक्षम नहीं हो पाता
1: है,
2: तो बदन में वो
1: बॉडी
2: की मात्रा बढ़ जाती है और वो शरीर का पीलापन की तरह दिखा जाता है। इसमें एडल्ट में अगर आप देखेंगे तो उनमें भी वजह कुछ, जो एडल्ट लोग एडल्ट में जो जॉन्डिस का जो वजह होता है
1: जी, जी,
2: तो वो सिर्फ बच्चों की वजह से, बच्चों में जो वजह होते हैं उनसे अलग होता है, भिन्न होता है
1: जी, जी।
2: उनमें खासकर ये खान पान, मतलब अगर आप कॉन्टामिनेटेड गंदे पानी पीने से
1: जी,
2: या फिर खून गलत तरीके से खून को चढ़ाना या बदन से निकालना
1: जी, जी,
2: या और भी तरह से के वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो जॉन्डिस होता है।
1: बिलरुबिन वगैरह बढ़ा
2: जी,
1: जिसको लीवर निकाल पाने में सक्षम नहीं रहा,
2: बिल्कुल,
1: तो बदन पीला दिखता
2: है। कई बार लीवर खराब हो गया तो भी आप जॉन्डिस के लक्षण देखेंगे एडल्ट में, लेकिन बच्चों में जो मुख्यतः वजह है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन। आमतौर पर नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो एडल्ट के मुकाबले
1: ज्यादा होती है,
2: और उनका टर्नओवर जो होता है, उनका टूटना और बनना होता है, वो भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से बच्चों में, नवजात शिशुओं में जॉन्डिस ज्यादा देखा जाता है,
1: ज्यादा देखा जाता है
2: जी, बिल्कुल। अगर आप इसके लक्षण की तरफ आएंगे कि क्या लक्षण देखा जाए, पहचान की नवजात शिशुओं में क्या पहचान होगी कि जॉन्डिस हो रहा है, आप अगर इसको एडल्ट से कंपेयर करेंगे तो हम जो एडल्ट हैं उनमें सिर्फ आंखों का पीलापन, ये हाँ, आंखों का पीलापन अगर हो गया तो आप कह सकते हैं कि जॉन्डिस हो गया।
1: यूरिन के पीलापन से भी कुछ,
2: यूरिन का पीलापन और आंखों का पीलापन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं वो उनमें जो पीलापन होता है वो सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहता है
1: जी, जी।
2: वो बच्चों के चेहरे में,
1: पूरे शरीर
2: में पीलिया हो जाता है, जो कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल स्टेप वाइज मैनर में होता है
1: जी।
2: मतलब सबसे पहले बच्चों का चेहरा पीला होगा, उसके बाद बच्चों के छाती, उसकी पीठ,
1: हाथ धीरे धीरे
2: पूरा बदन में वो फैल जाता है
1: जी।
2: तो ये लक्षण है जॉन्डिस को पहचानने का
1: जी। और कारण तो आपने बता दिया कि बिलरुबिन एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है लीवर के कमजोर रहने के कारण, जिस वजह से बॉडी के अंदर वो डेवलप करता रहता है और ये कारण बन गया
2: जी। नवजात शिशुओं में क्या होता है कि जो लीवर होता है वो ग्रेजुअल डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो वो जैसे ही वो धीरे धीरे कुछ हफ्तों में वो मैच्योर हो जाता है, अपना काम को सही तरीके से करने लगता है, और जो बच्चों का जो पहले का जो खून होता है वो टूट चुका होता है और अब नए खून बनने के कगार पे होते हैं, तो धीरे धीरे वो खतरा धीरे धीरे टलने लगता है।
1: सर, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे बच्चों में जो जॉन्डिस होता है वो जन्म के पहले से होता है जन्म के बाद
2: जी? अच्छा सवाल किया आपने। जो जन्म से पहले जो जॉन्डिस देखा जाता है उनमें कुछ बहुत ही मुख्य वजह है, जिसमें आप कह सकते हैं कि बच्चे और माँ के बीच में खून का एक आरएच

0: इनकॉम्पैटिबिलिटी हम मेडिकल टर्म यूज करते हैं कि बच्चे और माँ माँ का खून अगर आरएच पॉजिटिव है और जो बच्चा है वो आरएच नेगेटिव है, तो हालांकि पहले प्रेगनेंसी में ये तो दिक्कत नहीं सामने आती है, मगर जैसे दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो उसमें भी अगर ऐसी ही बात होती है, माँ का खून पॉजिटिव है, बच्चे का अगर ब्लड नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये अगर पहले प्रारंभिक वक्त में अगर माँ का इलाज नहीं हुआ तो वो बच्चे में उस वक्त पेट के अंदर ही खून का टूटना बहुत तेज हो जाता है और ये कई बार काफी भयावह रूप ले सकता है, जिसको हम हाइड्रोक्स फिटालिस भी बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ एंजाइम होते हैं जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जिनकी कमी की वजह से भी खून का टूटना देखा जाता है। माँ अगर कोई दवाइयां ले रही हैं तो उसमें भी इसका खतरा बना रहता है।
1: खान पान में भी कुछ
0: खान पान में हालांकि ज्यादा नहीं है, बट हाँ खान पान की भी कुछ भूमिका है इसमें, लेकिन हालांकि ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हम इसको टर्म देते हैं।
1: जो तो अगर जन्म से पहले बच्चा
0: के जन्म से पहले और विद इन टू डेज जन्म के एक दिन के भीतर ही वो जॉन्डिस दिखने लगता है,
1: जी।
0: तो ये इसको हम मतलब ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब अगर ये है तो ये खतरे वाली बात है,
1: जी।
0: मतलब इसमें कुछ खतरा है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के मुकाबले। तो जैसे अगर ऐसा होता है तो तुरंत ही आप शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जिसके बारे में नॉर्मल जॉन्डिस जो हम
1: मतलब जन्म के दो तीन
0: जो बाद जन्म के तीन दिन के बाद या दो तीन दिन में जो अपीयर होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, और बेहतर है आज हमारा टॉपिक हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर रखते हैं क्योंकि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है इसके जैसे आपने जैसे हमारे डिस्कशन हुई अभी कि लाल कोशिकाओं का टूटना, लीवर का इमेच्योर होना, इसके अलावा आप देखेंगे जो बच्चे सही से दूध नहीं पी पाते हैं, जिनमें जिनकी माँ का कंप्लेन होता है कि दूध नहीं उतर रहा है, या बच्चे में सकिंग जो एबिलिटी होती है, दूध पीने की शक्ति होती है वो कम होती है, आमतौर पर वो प्रीमेच्योर बच्चे जो समय से पहले पैदा होते हैं ये चीज देखा जाता है। इन कुछ वजहों के अलावा एक और वजह होता है कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में एबीओ इनकॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं,
1: जैसे कि
0: जी बिल्कुल ब्लड ग्रुप का, जैसे माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ से भिन्न है, तो उसमें भी देखा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूटती हैं और वो जॉन्डिस के रूप में सामने आता है। हालांकि ये प्रोसेस इतना घबराने की चीज नहीं है, लेकिन हाँ आपको शिशु विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए इस मामले में।
1: तो डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि इसके क्या कारण और लक्षण क्या है, जब लक्षण जाहिर हो जाता है उसके बाद क्या उपाय हमको करना है। एक तो आपने कहा कि शिशु विशेषज्ञ से हमको संपर्क करना है, लेकिन एहतियात के तौर पर घर में और क्या क्या जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। सबसे पहला काम तो आपको जैसे कुछ लक्षण जैसा मैंने आपको बताया कि आंखों का पीला होना, पेशाब का गाढ़ा पीला होना, या चेहरा बदन पीले दिखने लगना, इसको पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आमतौर पर कुछ लोग घर के आसपास कुछ लोग आए जस्ट देखे बोले बच्चा पीला दिख रहा है, तो घर बैठे इसको पीलापन को आंकन करना मुश्किल है। इसको सनलाइट में सूरज की रोशनी में जाकर बच्चे को देखें, जो नॉर्मल बच्चों का कलर जो होता है पिंकिश ब्राउन होता है उससे भिन्न दिख रहा है बच्चा, बच्चा पीला दिख रहा है, तो अगर पीलापन है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है पहली बात। तो और मैं दोबारा से कहूंगा कि आप डॉक्टर से अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से ही संपर्क करें बिना आप खुद में कुछ जजमेंट लिए कुछ इलाज करे बगैर, क्योंकि ठीक है आमतौर पर जो ज्यादातर 80% बच्चों में ये एक खतरे का विषय नहीं होता है और इसमें इलाज के तौर पे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है क्योंकि वो वजह को बराबर समझ पाएंगे और आंकन कर पाएंगे कि किस बच्चों की किस तरह के इलाज की जरूरत है। लेकिन जॉन्डिस जो है इसमें जो खतरे की बात है तो वो मैं बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है जो बिलिरुबिन होती है अगर उसका मुख्य वजह है कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, तो हम एज ए फिजिशियन हम माँ को कहते हैं कि आप बच्चों को बराबर दूध पिलाएं हर दो दो घंटे पे 10 से 15 मिनट की अंतराल,
1: 10
0: से 15 मिनट बिल्कुल कोशिश करते रहें,
1: नहीं दूध खींच पा रहा है
0: जी बिल्कुल,
1: तो एक ना एक दिन होगा ऐसा कि वो फिर खींचना
0: शुरू, बिल्कुल ये एक प्रक्रिया है, बच्चा अभी पेट से बाहर आया उसको धीरे धीरे करके वो बिल्कुल सही तरीके से सक करना शुरू करेगा। अगर वो मेच्योर है, अगर वो पूरे 9 महीने की अवधि पेट में गुजार कर आया है या उसके आसपास की अवधि क्या है, तो अगर वो बच्चा समय से काफी पहले पैदा हुआ तो फिर वो एक अलग विषय है इलाज का, उसमें अलग विषय है, उसमें पहले बच्चे का इलाज किया जाएगा, बच्चे को कुछ टाइम तक हम ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं,
1: रख सकते हैं जी।
0: बिल्कुल, और अगर बच्चा समय का है और वो दूध नहीं पी पा रहा है, माँ कह रही है दूध कम बना, तो हम माँ को इनकरेज करते हैं, इसमें फैमिली के सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है कि बच्चे को माँ को इनकरेज किया जाए कि दूध बराबर पिलाएं, और

0: इसके अलावा और भी कुछ दवाइयां भी हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि हम दूध को बढ़ने के लिए देते हैं, माँ के खान पान उसके पौष्टिक आहार माँ को देना ताकि दूध बराबर बने और बच्चा दूध पिए, क्योंकि मुख्य वजह है दूध का नहीं पीना, तो वो इसमें हल
1: बच्चा कमजोर रहेगा, लीवर भी उसके कमजोर रहेगा, तो फिर जो आपने कहा कि जो आरबीसी का टूटना बनना जो होता है वो फिर उससे फिर बिल्कुल डेवलप करेगा और पाचन क्रिया में जब कमजोरी होगी तो फिर वो जॉन्डिस का शिकार हो सकता है, बच्चा जब हो जाता है। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि जो जॉन्डिस हो जाता है बच्चे अगर उससे ग्रसित हो जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां?
0: सबसे पहले तो जो जॉन्डिस है, जो बच्चों का नवजात शिशु में जॉन्डिस दिखा जाता है, वो बहुत ही उसमें घबराने की बात नहीं है, बस आप अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, वो इनका इलाज कर देंगे, या तो फीडिंग के माध्यम से, या तो दूसरा तरीका हमारे पास नीली रोशनी में हम कई बार बच्चे का जो बिलिरुबिन होता है वो इस मात्रा तक पहुंच जाता है कि उसको नीली रोशनी में रखा जाता है,
1: फोटोथेरेपी
0: जिसको, तो उससे भी कई बार जो बिलिरुबिन होता है वो जो डेंजर फॉर्म में होता है उस पेशाब के रास्ते से, उस नीली रोशनी में रखने के बाद वो पेशाब के रास्ते के रास्ते से निकल जाता है, तो वो खतरा टहल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नेग्लिजेंस की वजह से अगर वो जॉन्डिस को सही वक्त पे डॉक्टर से संपर्क नहीं किए तो वो जो बिलिरुबिन होती है वो खून के माध्यम से होकर वो दिमाग में चली जाती है और उसके उससे बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। ये बहुत ही भयावह सी चीज़ है जो कि आज के दौर में जब हर जगह मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, तो इन खतरों को जानकर इन प्रॉब्लम्स में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना
1: चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बच्चों में होने वाली पीलिया रोग के क्या कारण है, उससे क्या क्या नुकसान हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, बच्चों को बचाया जा सकता है, इस बारे में जो जानकारी आपने हमारे साथ साझा किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: नव उम्र बच्चों में पीलिया रोग, कारण, लक्षण और उपचार, इस विषय पर आप सभी भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटवार्ताकार थे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहबाज आलम और भेंटकर्ता थे मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी। इस भेंटवार्ता के साथ ही स्वास्थ्य वार्ता ये कार्यक्रम अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का सिलसिला। गैर फिल्मी एल्बम के गीतों के इस सिलसिले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए सफर करते हैं शुरुआत तेरा चेहरा इस एल्बम के साथ अदनान सामी के स्वर से।

गीत संगीत के सफर में अब अगला पायदान रूप कुमार राठौड़ का स्वर, सुनिए उनके स्वर में इस गीत को।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

सोनू निगम के गाए इस गीत के बाद मधुर शर्मा गा रही हैं इस अगले गीत को। गीत संगीत सुनते रहिए आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

やっち

शंकर महादेवन के गाए इसी गीत के साथ गीत संगीत का यह सफर आज का यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह के 8 बजते ही समाचार प्रभात का आज का अंक होगा और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को

0: एक से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पहली जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी।

0: इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड

0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup.

0: फायदा हासिल हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगले चार वर्षों में मरहलावार इस पर अमल दरामद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साल बसाल रोड टैक्स माफ करने में 8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर दिल्ली के लोगों को इस पॉलिसी से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के फवायद हासिल होंगे।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की यह खुली जारहियत अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इख्तदार आला पर हमला और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। यह इकदाम पाकिस्तान के उस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वह अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। ताहम ऐसी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी आजादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का एदा किया है। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम महकमों और इदारों को आवारा कुत्तों के हमलों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर आज से अमल करने की हिदायत की है। ये हिदायत उस वक्त सामने आई हैं जब हुक्काम आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने, अवाम की हिफाजत और अदालती हिदायत की तामील के मकसद से इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों से कहा गया है कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाए। यह हुक्म गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसका मकसद अवामी मकामात को खासतौर पर बच्चों और मरीजों के लिए महफूज बनाना है जहां उनका रोज आना जाना होता है। हर साल 30 जून को संथाल इनकलाब की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कबायली इनकलाबियों सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो झानू को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। 30 जून 1855 को आज ही के दिन सिद्धों और कानों ने भोगनाडी से बरतानवी हुकूमत और इस्तेहसाल पर मबनी सरमायादारान निजाम के खिलाफ संथाल हूल का आगाज किया था। कबायली तारीख के माहिरीन इस तहरीक को आजादी की पहली मुनज्जम जिद्दोजहद करार देते हैं। मौरखीन का कहना है कि तकरीबन 20,000 लोगों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक मुसल्ला जिद्दोजहद का आगाज हुआ जिसमें संथालों के अलावा दिगर मकामी तबकात भी शामिल हुए। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: हूल दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में मॉर्निंग मेलोडी।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार।

आशा भोसले के गए फिल्म उमराव जान के इसी गीत के साथ मॉर्निंग मेलोडी का ये सफर अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनिए।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

0: दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 1989 को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। संसद कानून बनाती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है तथा जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाती है। एक सशक्त संसद ही पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी शासन की आधारशिला भी होती है। संसद महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको गाना सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में पिंटू की पप्पी फिल्म से।
1: ब्यूटीफुल सजना, ब्यूटीफुल

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में कौशल मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए मीका सिंह की आवाज में शुभ मंगल ज्यादा सावधानी इस फिल्म का गाना, लिखा है वायु ने और संगीतबद्ध किया है तनिष्क वायु ने।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से, इसे गाया शशि और डीजे खुशी ने, गगन आहूजा के शब्द हैं और तर्ज बनाई है शशि डीजे खुशी ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ, वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

0: فيلم سفر.
1: دے دینا آپ ساتھ تو مر جائے.

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तू प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है हेलो हजारीबाग।
3: 10 9 8 7

0: को देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
2: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं को माणिक चक्रवर्ती का प्यार भरा नमस्कार, जोहार आज की सुबह का। सबसे पहले चलिए पहले पायदान पर सुनते हैं आज का सुविचार। हर एक नया सवेरा एक नया अवसर लेकर आता है, बस कदम बढ़ाने का साहस चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है

सफलता स्वयं उसका स्वागत करती है। मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और सच्ची नीयत, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है। आज का एक अच्छा विचार आने वाले कल की बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। और आइए अब आज के मौसम का हाल जान लें। तापमान कैसा रहेगा? दिन में आज 33.6 डिग्री अधिकतम सेल्सियस रहेगी और रात में 24.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आज शहर में भागवत गीता का पाठ किया जाएगा। आयोजन स्थल है झील सेंटर। समय संध्या 6:30 से। महावीर स्थान मंदिर में आज पूजा पाठ है। समय शाम 7:00 से।

अगले पायदान की ओर बढ़ते हैं, जो है आज हमारे हजारीबाग शहर की गतिविधियों के बारे में। साथियों, संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रमुखता से की जाती है, लेकिन हजारीबाग का एकमात्र राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय पिछले एक वर्ष से पूरी तरह से बंद पड़ा है। गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित यह विद्यालय शिक्षकों की कमी के कारण पहले पठन पाठन से वंचित हुआ। अब यह प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए मध्यमा परीक्षा का केंद्र भी नहीं रहा। एक एक कर सभी शिक्षक सेवानिवृत्त या प्रोन्नत होकर चले गए, लेकिन उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं हुई। विद्यालय अघोषित रूप से बंद हो गया। करीब डेढ़ दशक पहले यहाँ नियमित नामांकन और पढ़ाई बंद हो गई थी। इसके बावजूद 2024 तक यह विद्यालय प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए जैक के मध्यमा परीक्षा का फॉर्म भरने और परीक्षा में शामिल होने का केंद्र बना रहा। वर्ष 2025 में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण रंजन ने यहाँ प्राइवेट परीक्षार्थियों का फॉर्म भरना भी बंद करा दिया। सिर्फ एक चतुर्थवर्गीय कर्मी कर्मचारी है वर्तमान में, और शिक्षकों की कमी के कारण प्रमंडल का एकमात्र संस्कृत विद्यालय बंद हो गया। इनकी इस स्कूल की राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय की जो स्थापना थी, ये 1957 में हुई थी। ...2016 में हुआ था निर्माण, पूरी राशि की हो गई निकासी, लेकिन 9 साल में नहीं मिला लाभ। जी हाँ, चुरचू प्रखंड के चरही पंचायत स्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय परिसर में बना 2 मंजिला छात्रावास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। छात्रावास निर्माण में 5 करोड़ की निकासी कर ली गई, जैसे तैसे भवन भी बना दिया गया, लेकिन 9 साल गुजर गए, भवन निर्माण को हैंडओवर नहीं किया गया, जिसके कारण भवन का उपयोग नहीं हो सका और हैंडओवर के बगैर ही भवन अब खंडहर में तब्दील हो गया। यह भवन 2017-18 में 5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था।

आपको एक और सूचना दें, हजारीबाग से ही संबंधित कि जिले में अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा जोरों पर चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दुकानों पर बेखौफ बड़े गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडरों में रिफिलिंग की जा रही है। एक किलो गैस भरने के लेते हैं 150 रुपए और दुकानदार के पास 10-10 घरेलू सिलेंडरों का स्टॉक है, इस पर ध्यान देने की जरूरत। अब हजारीबाग में सामान्य से कम बारिश की बात की जाए तो धान की बुआई प्रभावित हो गई है। सामान्य से कम बारिश होने से किसान परेशान हैं। पिछले साल की तुलना

हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। मिलेनियम पब्लिक स्कूल हजारीबाग की ओर से पकरा मोड़ हजारीबाग में हेलमेट जागरूकता पबरा मोड़ पर चलाया गया और इस हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ भव्य रूप से। इस अभियान का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में ऑर्थो सर्जरी ठप हो गई है, मरीजों की बढ़ गई है परेशानी। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की प्रबंधकीय लापरवाही का एक बार फिर ये सामने आ गया। अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती मरीजों को पिछले 8 से 10 दिनों में से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों से हड्डी से संबंधित सभी सर्जरी पूरी तरह से ठप पड़ी है। इससे मरीजों की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। हजारीबाग से एक और खबर। उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कार्यपालक अभियंताओं संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन की अलग अलग विकास योजनाओं के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी योजनाएं तय समय सीमा से पूरी करने का निर्देश दिया और गुणवत्ता पर सख्ती का संदेश भी। उपायुक्त ने कहा कि कई योजनाएं स्वीकृति के बाद भी लंबे समय तक अधूरी रहती हैं। इससे सरकार की विकास योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित होता है।

हजारीबाग इनर व्हील क्लब को जिला स्तर पर मिल गया सर्वश्रेष्ठ क्लब का सम्मान। समारोह में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर क्लब ने बढ़ाया जिले का गौरव।

सिलवार धाम से 16 जुलाई को निकलेगी भव्य रथ यात्रा। दर्शन देंगे भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के वार्षिक रथ यात्रा महापर्व को लेकर हजारीबाग बगोदर मुख्य मार्ग पर स्थित सदर प्रखंड के सिलवार में स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ धाम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया। अनवासर यानी अज्ञातवास की परंपरा के तहत सोमवार रात 9 बजे भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के मंदिर का कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिया गया। अब अगले 16 दिनों तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। 15 जुलाई की रात कपाट खुलने के बाद 16 जुलाई को विशेष वैदिक अनुष्ठानों के साथ भगवान भक्तों को दर्शन देंगे।

श्रोताओं, आज हूल दिवस है। हूल क्रांति भारत के प्रथम जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा अब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हूल दिवस के अवसर पर सभी को हमारा नमन और याद करने का दिन। झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है आज हूल दिवस का। तो हूल गाथा जानने से पहले एक हूल दिवस पर गीत तो सुन लें।

जी हाँ श्रोताओं, 171 साल हो गए हूल के 30/6/1855 से। 30/6/1855 को भोगनाडीह में सहोदर भाई सिदो कान्हू ने की थी एक विशाल जनसभा। जमा हुए थे 10,000 से ज्यादा संताल। 10,000 की भीड़ में गरजे सिदो, आज से महाजन, दारोगा और गोरी चमड़ी वालों का नहीं, हमारा राज चलेगा। जी हाँ, लहू से लिखा गया था हूल।

आप सुन रहे हैं हेलो हजारीबाग, मैं हूं माणिक चक्रवर्ती। और अब आज हुल गाथा के बारे में, क्योंकि आज हुल दिवस है, आज 30 जून का दिन है। केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। आज हम स्मरण करते हैं उस महान जन विद्रोह का जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह दिन है हुल दिवस का। हुल शब्द संताली भाषा का है जिसका अर्थ है विद्रोह, क्रांति या अन्याय के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध। लेकिन यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था श्रोताओं, यह उन लोगों की आवाज थी जिन्हें उनकी ही धरती पर अन्याय, शोषण और अपमान सहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। आज के दिन एक पंक्ति याद आती है, जंगल की मिट्टी ने जब ललकार लगाई, सिद्धू कान्हू की हुंकार से आजादी मुस्कुराई। हुल क्रांति क्यों हुई थी? 19वीं शताब्दी के मध्य में संथाल समाज खेती किसानी और जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अंग्रेजी शासन के आने के बाद स्थिति बदल गई। महाजनों ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज देना शुरू किया, जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलने लगे और साथ ही अंग्रेज अधिकारियों ने जंगलों और जमीन पर नियंत्रण बढ़ा दिया। मेहनतकश आदिवासियों की भूमि छीनी जाने लगी, बेगार कराई जाने लगी और उनका जीवन संकट में पड़ गया। संथाल समाज के सामने एक ही प्रश्न था, क्या अन्याय सहते रहे या उसके विरुद्ध उठ खड़े हों? आया आज का ही दिन 30 जून 1855 का, इतिहास का वह दिन। आज ही के दिन 30 जून 1855 वर्तमान झारखंड के भोगनाडी गांव में हजारों संथाल एकत्रित हुए। कहा जाता है कि 10,000 से लेकर 30,000 तक लोगों ने एक साथ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया। एक ऐतिहासिक सभा का नेतृत्व किया चार वीर भाइयों ने, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद

मुर्मू और भैरव मुर्मू और इस संघर्ष की वीरांगनाएं थी फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। इन सभी ने मिलकर घोषणा की कि अब अन्याय नहीं सहेंगे और अंग्रेजी शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। सिद्धू और कान्हू की हुंकार हुई। लोक कथाओं के अनुसार सिद्धू और कान्हू ने लोगों से कहा, अबुआ दिशोम अबुआ राज, अर्थात अपना देश अपना राज। यही संदेश पूरे संथाल परगना में बिजली की तरह फैल गया। कुछ ही दिनों में हजारों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। फूलो और झानो की वीरता दिखी। जब भी हूल क्रांति की बात होगी श्रोताओं, तब फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया। वे केवल प्रेरणा देने तक सीमित नहीं रही बल्कि युद्ध भूमि में भी साहस पूर्वक डटी रही। आज भी झारखंड की लोक गाथाओं में उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। शुरुआत में अंग्रेज इस आंदोलन को साधारण विद्रोह समझ बैठे, लेकिन जब आंदोलन तेजी से फैलने लगा तो अंग्रेजी शासन ने बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। तोपे बंदूकें और आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने निर्दोष ग्रामीणों पर अत्याचार किए। हजारों संथाल वीर शहीद हुए। सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। चांद और भैरव भी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इतिहासकार मानते हैं कि हूल क्रांति ने अंग्रेजों को पहली बार ये एहसास कराया कि भारत का आदिवासी समाज संगठित होकर साम्राज्यवादी शासन को चुनौती दे सकता है। यह आंदोलन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 2 वर्ष पहले हुआ और उसने पूरे देश में प्रतिरोध की भावना को नई दिशा दी। यही कारण है कि हूल क्रांति को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिना जाता है। आज जब हम हूल दिवस मना रहे हैं, तब यह केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है श्रोताओं, यह हमें सिखा रहा है अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं, अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करना, एकता सबसे बड़ी शक्ति, अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक रहना, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। हर वर्ष 30 जून को झारखंड विशेषकर भोगनाडीह और संथाल परगना में, जी हां विशेषकर भोगनाडीह और संथाल परगना क्षेत्र में हूल दिवस बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लोक गीत नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से नई पीढ़ी को इस इतिहास से परिचित कराया जाता है। ये पंक्तियों के साथ हम समापन कर रहे हैं क्योंकि आगे भी हूल दिवस के बारे में एक भेंट वार्ता है, एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और हूल क्रांति के अमर नायकों को समर्पित जंगल की शान थे, धरती की पहचान थे, सिद्धू कान्हू फूलो झानू भारत की आन थे। बलिदान उनका दीपक है जो सदियों तक जलता रहेगा। हूल का यह अमर संदेश हर दिल में पलता रहेगा। हूल क्रांति के अमर शहीद सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू और साथ में फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू को शत शत नमन करता हूं मैं। और आप सभी इस दिवस को नमन कीजिए। नमस्कार। जय झारखंड, जय भारत।

ये अगले पायदान की आहट है। और अगला पायदान है भारत में और विश्व में क्या हुआ था आज ही के दिन, आज का इतिहास, किन विभूतियों ने हमें अलविदा कहा था आज ही के दिन और किन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था। सबसे पहले बता दूं कि आज 30 जून को जन्मी प्रमुख विभूतियां कौन कौन से हैं। दादा भाई नौरोजी 1825 को इनका जन्म हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत थे ये, समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक। और C.N.R. राव 1934 में इनका जन्म हुआ। आज ही के दिन भारत के महान रसायन वैज्ञानिक एवं भारत रत्न सम्मान से सम्मानित थे ये। माइक टाइसन 1966 को जन्मे थे, 1966 को विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाज और पूर्व हैवीवेट विश्व चैंपियन थे। और राल्फ शुमाकर 1975 को इनका जन्म हुआ, जर्मनी के प्रसिद्ध फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर है ये। शेरिल कोल 1983 को जन्मे, ब्रिटिश गायिका, गीतकार और टीवी व्यक्तित्व। माइकल फिलिप्स 1985 को जन्मे, इतिहास के सर्वाधिक ओलंपिक पदक विजेता। और ओलिवान चान 1990

को हांगकांग की जो अभिनेत्री है उनका जन्म हुआ। १९७१ को दादा भाई नौरोजी का आज के दिन देहांत हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे ये। और 1934 को कुर्ट फॉर्न श्लाइरश, जर्मनी के पूर्व चांसलर, इनका निधन हुआ। लिलियन हेलमैन ने हम सबको अलविदा कहा 1984 को, प्रसिद्ध अमेरिकी नाटककार और लेखिका थी ये। चेट एटकिंस 2001 को अलविदा कह गए। ये विश्वविख्यात अमेरिकी गिटार वादक और संगीत निर्माता थे। यितझाक शमीर 2012 को इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने हमें अलविदा कहा। मुमताज मुफ्ती 1995 को अलविदा कह गए, प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार थी ये। लीना हॉर्न 2010 में हम सबको अलविदा कह गए, अमेरिकी प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री थी ये। और अब विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं। 1905 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता सिद्धांत पर अपना ऐतिहासिक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। 1908 को टुंगिस्का इवेंट ने साइबेरिया में विशाल क्षेत्र को प्रभावित किया। 1936 को गॉन विथ द वाइंड प्रकाशित हुई। 1971 को सायुज 11 के 3 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के दौरान मृत्यु हो गई। 1972 को विश्व में पहली बार यूटीसी में लीप सेकंड जोड़ा गया। और अब 30 जून को भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं। 1799 को कृष्णगंज वाइल्डबर्ग थर्ड मैसूर का शासक घोषित किया गया। 1855 को संथाल विद्रोह का बिगुल फूका गया, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े आदिवासी आंदोलनों में से एक हुआ। 1914 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के आंदोलन के दौरान पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1917 को आज ही के दिन दादा भाई नौरोजी का निधन हुआ। 1997 को आज ही के दिन भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत कदम आगे बढ़े।

हेलो हजारीबाग सुन रहे हैं आप सभी अपने दोस्त माणिक के साथ आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से जो है आपका ही FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़।

हेलो हजारीबाग में अब आगे हूल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आपको सुनवा रहा हूं। हूल एक जन क्रांति, संचालन एवं वाचन दिया सूरज रजक और परमेंद्र कुमार मिश्रा ने, संकलन किया है और वाचन दिया है इन्होंने और प्रस्तुत करता है राजीव कुमार, संयोजक है अमिताभ कुमार। तो आइए हूल दिवस के अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम सुनते हैं, हूल एक जन क्रांति।

0: तारीख 23 जून वर्ष 1855 करवट बदलते मौसम के बीच झारखंड प्रांत के साहिबगंज जिले का भोगनाटी गांव जिसे इतिहास बदलने के लिए सवेरे सवेरे जगा हो।
1: 30 जून की यह तारीख संथाल विद्रोह की आक्रामकता का श्री गणेश था। अंग्रेज और शोषणकारी महाजनी व्यवस्था के खिलाफ इस तारीख को संथाल आदिवासियों ने हथियार उठाया था। इतिहास में तब से लेकर आज तक इसे हुल क्रांति दिवस के नाम से स्मरण किया जाता रहा है।
0: 23 जून 1855 को ही सिद्धू कानू नाम के दो भाइयों ने साहिबगंज के भोगनाडी गांव में इस आंदोलन को बहुत ही प्रखर और क्रांतिकारी नेतृत्व दिया। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों, हमारी माटी छोड़ो।
1: इस आंदोलन की प्रखरता ने बहुत ही क्रांतिकारी छाप छोड़ी, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आने वाले वर्षों में जितने भी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े गए, हर जगह इसकी गूंज सुनाई पड़ रही थी।
0: ऐसे में इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, जनजातीय जीवन शैली, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए मर मिटने का जज्बा से लैस आदिवासी समाज पर बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का।
1: आज का संथाल परगना उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। पहाड़ों जंगलों से घिरे इस प्राकृतिक सौंदर्य में निवास करते थे संथाल और पहाड़िया जनजाति।
0: आदिवासियों की ये आबादी मूलतः शांतिपुरी मानी जाती है। ये इसी अंचल में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी प्रकार का राजस्व ये किसी को नहीं देते थे,
1: लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभुत्व और राजस्व संग्रहण के प्रति इनके जुझारू रूप का प्रतिकूल असर आदिवासी समाज पे पड़ा।
0: अंग्रेजों ने इसके लिए जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया और इस इलाके में इसकी फौज उतार दी गई और संथाल पहाड़िया सहित अन्य निवासियों से जबरन इसकी वसूली भी की जाने लगी।
1: संथाल सहित सभी अन्य जनजातियों का जीवन दुभर हो गया। अंग्रेजों और जमींदारों के दोहरे मार झेल रहे थे ये। राजस्व चुकाने के लिए लगातार कर्ज में डूबते जा रहे थे।
0: एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो चुकी थी। जीवन

0: यापन कष्टमय हो गया था, असंतोष चारों ओर उभरने लगे थे। अंततः यह एक जन आंदोलन के रूप में उभरा।
1: इस जन आंदोलन की प्रासंगिकता सर्वकालिक प्रेरणा का हेतु बन गया। करीब 160 वर्षों के बाद भी हुल दिवस अन्याय के खिलाफ पथिक की तरह हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।
0: इस आंदोलन के प्रभाव उत्पादन करने की क्षमता पर हर कोई आज हैरान हो जाता है। आंदोलन की मूल भावना की सर्वत्र चर्चा आज भी करते हुए लोग मिल जाते हैं। इस विषय पर निगाह डाल रही है विनोबा भावे विश्वविद्यालय इतिहास विभाग की प्रमुख फ्रांसिस्का कुजूर।
2: 30 जून 1855 को हुल दिवस हुआ था, जिसमें हमारे संथाल नायक जो थे सिद्धू कान्हू, दो भाई तो थे ही, साथ ही उनके और अन्य दो भाई थे चांद भैरव। तो इस तरह से चार सहोदर भाई एक परिवार से निकलकर उन्होंने संथालों का नेतृत्व किया था। क्योंकि ये 30 जून हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 30 जून को ही मन पूर्णिमा का दिन था। उस दिन रात्रि को लगभग 10,000 संथाल एक जगह भोगना डी में जमा हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था, उसी को हम लोग हुल कहते हैं। तो यह दिन सचमुच आज के दिन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रेरणादायी है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। अंग्रेजों ने बहुत ही धोखाधड़ी किया था उस समय आदिवासियों के साथ, बंधुआ मजदूर की तरह उनको रखा था और उनसे इतना साहूकारों के द्वारा इतना ऋण लिया जाता था कि वो ऋण वो मरते दम तक चुकाते रहते थे लेकिन समाप्त नहीं होता था। तो इसीलिए इन्होंने चांद भैरव सिद्धू कान्हू मुख्य रूप से ये दोनों बड़े भाई थे, कम बहुत कम उम्र के थे और ये निर्धन परिवार के भी थे और ये लोग भी भुक्त भोगी थे। इसलिए इन्होंने कहा जाता है ये कि उनको स्वप्न में देवता का संदेश मिला और उन्होंने संगठित होकर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया और इसी बात पर उन्होंने पूरे अपने समाज को संथाली समाज को उन्होंने संगठित किया और उनसे कहा कि हम लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है, लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हमारे ठाकुर बाबा का संदेश है। और इस तरह से उनके इस संदेश के बाद सारे संथाल लोग उनको अपना नेता स्वीकार कर लिए और उनके नेतृत्व में उन्होंने उलगुलान करना शुरू किया, जिसको हम लोग आज भी हुल कहते हैं। और हुल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जब भी जब जब हुल उठता है या आंदोलन होता है या उलगुलान होता है, ये आर्थिक सामाजिक राजनैतिक या हम लोग इसको धार्मिक भी बोले, ये हम लोग इसको धार्मिक भी कह सकते हैं क्योंकि धर्म का सहारा लेकर ही इन्होंने लोगों को संगठित किया था और धर्म के नाम पर सबों ने उनकी बातों को स्वीकार किया। इन्होंने कुछ लिखित पर्चा वगैरह भी बांटा था और कहा किसी में संदेश है हमारे ठाकुर बाबा का, और इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा जनता पर और जितने वहाँ दामिनी को पर जितने शोषित लोग थे सबों ने इनको अपना नेता स्वीकार किया, इन्होंने उलगुलान किया। यही 30 जून 1855 पूर्णिमा की रात को शुरू हुआ और ये बहुत जल्द सारे इलाके में फैल गया। उसके बाद से ये काफी विस्तृत भी हो गया और इनके आंदोलन के बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए, सिद्धू कान्हू के साथ, जिसमें हम लोग चांद राय और सिंह राय को भी हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी भी यहाँ भूमिका थी। और मैंने वहाँ के सारे लोग जो बाद में शहीद हो गए, आज भी हम लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, विशेषकर 30 जून है तो हम लोग सारे शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। इनके साथ साथ इनकी दो बहनें भी थी, ये फूलों और झीलों, इन्होंने भी पूरा महिलाओं को एकत्र करके इन्होंने आंदोलन में हुल में साथ दिया था। तो ये एक कितना आज के जवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि एक परिवार से चार भाई, तो चार भाई दो बहनें भी निकली थी आंदोलन करने के लिए। जो आज हम इस आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, आज हम जरूर स्वतंत्र हो गए हैं लेकिन हमारे समाज में आज भी दकियानुसी विचारधाराएं हैं, आज भी हम प्रेरित बने होते हैं और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उस समय इन्होंने आंदोलन की अंग्रेजों के खिलाफ अन्याय के खिलाफ इनकी जो भूमिका थी उसे हम नहीं भूल सकते हैं।
1: शोषण के खिलाफ एकजुट होने, संगठित होकर लड़ने, बेहतर नेतृत्व देने, आने वाले पीढ़ियों को प्रोत्साहन देने में हुल क्रांति का दूसरा उदाहरण बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अपने विचारों के साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनील कुमार कमल।
3: तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव के समर्पण को भूला नहीं जा सकता, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें कि लोगों का जो त्याग और समर्पण है उससे कहीं कोसों दूर है। अगर वो लोगों ने अभाव में जीवन को जिया और संघर्षों को लड़ा और संघर्ष को पार करते हुए लगातार बहुत सारी उपलब्धियां सामने दिखाई। जनजातियों की जो भी सारी समस्याएं थी उसको पार पाया और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई। पहले के जो त्याग थे आज त्याग नहीं रहे। आज सोशल इंजीनियरिंग वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज के दौर में जरूरत है कि

0: अभाव को नहीं देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है, और लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वो चीज दिलवाए लोगों को, वो जनजातीय लोगों को वो चीज मुकम्मल कराए जिसकी जरूरत है उन्हें। फूल दिवस की प्रासंगिकता यही है कि जनजातीय जो भी लोग हैं, जितने जनजाति लोग हैं, उनके वजूद को बचाया जाए, सामाजिक तौर पर जो पिछड़ गए हैं, जंगल में दब गए हैं, जो अभाव है उसे दूर किए जाने की जरूरत है, और सही समाज सेवा की जरूरत है, सही लड़ाई की जरूरत है जो आज होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। कि लोग सिद्धू कान्हू चांद भैरव जब इन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो युवा वर्ग से थे, इनके बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे अरमान थे, लेकिन इन्होंने अपने युवापन को वो करियर के रूप में नहीं देखा, अपने भविष्य को किनारे कर लोगों की खातिर शहादत को पाए, लोगों की खातिर वो बलिदान दिखाया जो लोग अक्सर नहीं दिखाया करते हैं। आज जो हमारा यूथ है, हमारा जो युवा वर्ग है, उसे ये सीखने की जरूरत है कि दौर उस वक्त भी सिद्धू कान्हू चांद और भैरव का था। वो चाहते तो बहुत कुछ अपने भौतिक सुख के लिए जी सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, सारा कुछ उनका था, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए सोचा, लोगों के अभावों को बहुत तरीके से देखा, लोगों के संघर्षों को काफी करीब से देखा, और वो आगे आकर लोगों के लिए ही अपने शहादत को पा गए, और जनजातीय लोगों को कहीं ना कहीं हर तरह से सुरक्षित रखकर वो सारा नया आयाम देकर चले गए। लेकिन आज जितने भी जनजातीय लोग हैं उन्हें यह सीखे जाने की जरूरत है, जो यूथ हैं, जो यंग हैं, जो अभी सपना देख रहे हैं, उन सपनों में उन्हें खोने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों को देखे जाने की जरूरत है, अपने समाज को लेकर चले जाने की जरूरत है, कि अगर वो चलते हैं तो उनका समाज उनके साथ चले। राष्ट्रहित की बात अगर हम करें तो यूथ को यह सोचे जाने की जरूरत है कि राष्ट्रहित के साथ साथ पूरे समाज तंत्र और सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए पिछला तबका, जो वंचित, सबसे पिछला वंचित तबका है, उसको हम साथ लेकर चले। जनजातीय उन लोगों को देखें जो अभी भी जंगल में दबे हुए हैं, अभी भी उन्हें पानी नसीब नहीं है, उन्हें सारी व्यवस्थाएं, जो मौलिक व्यवस्थाएं हैं, जो अभी नसीब होनी चाहिए थी वो नहीं है, उन्हें आगे लाए जाने की जरूरत है, वो अपना ध्येय वहां पर ले जाए, तब सार्थकता पूरी की जा सकती है।
1: संथाल परगना का यह आंदोलन, यह होल, इसको लेकर बाद में भी खूब चर्चा हुई। कुछ एक मान्यताओं में इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। अपने विचार के साथ डॉक्टर फ्रांसिस्का कुजूर।
2: इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ही आवाज की कि भूमि हमारी है, इसको हम जोतते हैं, खेत हमारा है, हम इनको मालगुजारी नहीं देंगे, और इन्होंने मालगुजारी नहीं देने का संकल्प किया और इनके संकल्प को सभी ने स्वीकार किया एकजुट होकर। इसीलिए ये इसे हम जो 1855 का होल कहते हैं, इसके बाद हमारा 1857 की क्रांति हुई जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो मैंने लड़ाई लड़ी गई, तो यदि हम 1855 को जो हमारे झारखंड में हुआ, संथाल परगना में हुआ, और इसी होल के बाद वहाँ संथाल परगना के लिए अंग्रेजों ने ये टेनेंसी एक्ट निकाला, तो यदि हम कहें झारखंड से हमारा होल से ही आंदोलन शुरू हुआ, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, तो इसे हम गलत नहीं मान, मैंने माना जा सकता है, मैंने हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो सचमुच 1857 के पहले यहाँ क्रांति शुरू हो गई थी, और यहाँ जितने हमारे संथाली भाई थे वे काफी संख्या में शहीद हुए, के शहादत को हम लोगों को याद करना चाहिए आज के दिन में, और उनको हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, और हमारे जितने युवा वर्ग के लोग हैं उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें समय समय पर प्रेरित करता रहता है, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा हमें अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि उस समय की परिस्थिति जो था, वे लोग इतने निर्धन थे, इतने गरीब थे, मैंने असहाय थे, फिर भी उन्होंने एक बहुत ही मजबूत मैंने अंग्रेज शासन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत की।
3: कहते कि जिसका सूर्यास्त कभी नहीं होता।
2: हाँ जी जी जी बिल्कुल जी, तो इसीलिए हम लोगों को ये कहना चाहिए कि ये इनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और अविस्मरणीय है जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसीलिए ये सिद्धू कान्हू इतने मेहनत का शोषित रथ संथालों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो उनका बलिदान कभी भी निष्फल नहीं हुआ, और उनका शहादत मैंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रेरणा का काम करता रहा, और हजारीबाग भी उसे मैंने छुटा नहीं था, जैसे बीरभूम, बांकुरा, ये मानभूम वगैरह, हजार ये सारे क्षेत्र मतलब कि ये प्रभावित क्षेत्र मैंने

0: इकट्ठा किया, जितने लोग मतलब कि दामिनी को में लोग रहते थे 1855 में, है ना, तो वहाँ इन्होंने जो भाई थे इन्होंने वहाँ मैंने ये बात सारी और फैला दिए। इनका मैंने कहा जाता है कि जो फैलाने का जो, चूंकि ये लोग पुजारी परिवार से संबंध रखते थे तो ये जो बोलते थे उस पर लोग सहज ही विश्वास कर लेते थे। तो इन्होंने जो कहा कि हम लोगों को संदेश मिला है ईश्वर के द्वारा और उन्होंने हम लोगों को ये अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आंदोलन करने के लिए या लड़ाई करने के लिए जो संदेश दिया है, जब इन्होंने कहा तो सब ने मान लिया। इन्होंने कहा कि अलौकिक दिव्य शक्ति हम लोगों पर सवार है, ये कहा, तो स्वाभाविक रूप से सीधे साधे जो आदिवासी थे उनके बातों पर उन्होंने विश्वास कर लिया और उन्होंने उनका अपना नेता स्वीकार कर लिया। इसलिए वे जो बोलते थे उन्होंने उसे स्वीकार किया और यही वजह है कि लोग इकट्ठा होते गए कि ये दिव्य संदेश है और उसको लोगों ने स्वीकार किया और यही कारण है भीड़ के भीड़ उनके पास पहुंचे।
1: महाजन साहूकार जो इकट्ठा हो गए थे तो दोहरी मार उस वक्त संथाल या पहाड़िया जनजाति के लोग भुगत रहे थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर, पहाड़िया जनजाति के लोग भी थे उसमें, संथालों के अलावे। तो इस तरह से जो संदेश फैला बिना संचार माध्यम से, तो ये संदेश मैंने यही धार्मिकता के माध्यम से ही फैला था
1: लोगों को इकट्ठा करने में।
0: जी जी जी, आज की तारीख में हम यही बोलेंगे कि जब उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने लोगों को एकत्र किया और एक विशेष प्रयोजन से लोगों को एक सीख दी और नेतृत्व प्रदान किया। तो आज भी हम, यदि हमारे ऊपर किसी तरह का शोषण होता है तो हम भी मतलब उनके उनसे सीख ले करके हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और यदि अच्छी बात है तो अच्छी बात को भी हमें समाज में फैलाना चाहिए और समाज में किसी तरह की कुरीति है तो उसे भी हमें समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी हौसले के साथ तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, देश भी तरक्की करेगा। तो हमें यही शिक्षा लास्ट अंत में यही शिक्षा मिलती है कि अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठाने में नहीं डरना चाहिए।
2: संथाल क्रांति की खूबियों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आंदोलन के प्रति स्थानीय आदिवासियों ने जुझारूपन दिखाया, इनमें जो जीवटता थी उसकी कहानियां पूरे संथाल में आज भी सुनी जा सकती हैं।
3: आंदोलन की तीव्रता, जनजातीय समाज की एकजुटता, अत्याचार अन्याय के खिलाफ मुखर होना, बहुत सारे गुणों के कारण यह आंदोलन सदा स्मरणीय रहेगा।
2: इस आंदोलन के लिए पूरी जनता एक साथ एक आवाज में हाजिर हो जाने की कहानियां इतिहास के पन्नों में हर अध्याय में ढूंढना आसान नहीं है।
3: यही वजह है कि संथाल क्रांति की हर एक बात को उत्साहपूर्ण ढंग से दुनिया स्वीकार कर रही है, इस आंदोलन के नायकों को नमन कर रही है।
2: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा।
3: आज पूरी दुनिया इस क्रांति के अमर नायकों को याद कर रही है, श्रद्धा सुमन पेश कर रही है, इनके कृत्यों को याद कर रही है, इनके जीवटता के किस्से गा रही है। ऐसे नायकों को कोटि कोटि नमन।
4: हूल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे हम सभी। हूल एक जन क्रांति, संकलन एवं वाचन दिया सूरज रजक और प्रमेंद्र कुमार मिश्रा ने, प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे अमिताभ कुमार। हेलो हजारीबाग सुन रहे हैं आप सभी अपने दोस्त मणिक के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी है, 30 जून। जी हाँ, आज 30 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मना रही है। यह दिन हमें अंतरिक्ष के उन छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पिंडों के बारे में जागरूक करता है जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आकाश में बिखरे हैं अनगिनत रहस्य, ज्ञान की रोशनी से ही खुलते हैं उनके सत्य। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूक करना और यह समझाना है कि यदि कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो उसे उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 30 जून की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में तुंगुस्का नामक स्थान पर एक विशाल अंतरिक्षीय पिंड के विस्फोट ने लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल को नष्ट कर दिया था। यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ज्ञात क्षुद्र

ग्रह या उल्कापिंड संबंधी घटना मानी जाती है। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा वर्ष 2016 में निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आखिर ये क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं? क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के छोटे छोटे चट्टानी पिंड होती हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लगभग 4.86 अरब वर्ष पहले सौर मंडल के निर्माण के समय बचे हुए पदार्थ हैं। इसलिए इन्हें सौर मंडल के इतिहास की जीवित धरोहर भी कहा जाता है। क्या सभी क्षुद्र ग्रह खतरनाक होते हैं? इसका उत्तर होता है नहीं भाई, अधिकांश क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं और किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं करते। तो दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि नासा, ईएसए और भारत की इसरो अंतरिक्ष में मौजूद क्षुद्र ग्रहों पर लगातार नजर रखती है।

अब भारत की भूमिका भी जान लें। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी लगातार मजबूत हो रहा है। चंद्रयान, मंगलयान और अन्य वैज्ञानिक अभियानों ने दुनिया में भारत की पहचान बनाई है। भविष्य में भारत भी ग्रह सुरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दिवस का संदेश यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हमें केवल अंतरिक्ष का ज्ञान नहीं देता, बल्कि यह भी सिखाता है कि विज्ञान और अनुसंधान मानवता की सुरक्षा के लिए कितने आवश्यक है। जब दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान खोजा जा सकता है। आसमान की ऊंचाइयों को छूना है अगर, तो जिज्ञासा को कभी कम मत होने दो। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो ब्रह्मांड के अंधेरों को भी रोशन कर देता है।

और इधर विश्व की गतिविधियों को देखें तो यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। एक हफ्ते में रूस की दूसरी बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन दागे गए, नुकसान बहुत हुआ। यूक्रेनी हमले में रूस की रिफाइनरी तबाह हो गई है। पुतिन ने पहली बार माना देश में ईंधन कम है।

अपने दोस्त मणि के साथ आप सभी सुन रहे हैं हेलो हजारीबाग। आपने ट्यून किया FM 102.1 MHz।

सबसे गहरा दर्द और सबसे बड़ा घाव होता है किसी अपने का बिछड़ जाना। तो दुआ कीजिए आज हेलो हजारीबाग में के आखिरी समय के हर बिछड़ने वाला जो है वो मिलता रहे और दिल खिलता रहे। इसी के साथ अपने दोस्त माणिक चक्रवर्ती को कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अब अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे हेलो हजारीबाग, यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की 11 बज गए, अब थोड़ी देर में सुनिए हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का कलाम। और अब समाप्त फरमाइए प्रेम वर्मदानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाजों में।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम

0: 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में नूर नरवी का कलाम। यह है पंकज उदास की आवाज और नूर नरवी का कलाम।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज गुलजार का कलाम, और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: न जवानी नल चल दी।

0: आज का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों

0: में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं। साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इंदिवर के बोलो को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

गुलशन बाबरा का लिखा एक गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंघरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुने इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना। आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम की हैं।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

नमस्कार, शुभ दोपहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरे, बड़ी दूर से देख आवाज देती, कभी पाँव में डोर बनकर लिपटती, किनारे पे आए मिले लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर उधर जा निकलती, जहां पत्थरों पर धड़कते हैं दो तिल एक ही ताल पर, गले उनसे मिलकर उन्हें प्यार देकर कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं, समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफर से सजाया गया है, काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती है उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक है ये लहरें, समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफर का इंतजार रहेगा। तो भाई इंतजार खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हों। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समुंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का, माई प्ले लिस्ट इज लॉन्गर टूडे होपिंग टू हैव मोर चांसेस, छूकर मेरे मन को रुक जा रात ठहर जा रहे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गजल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो, और बहुत खूबसूरत गजल है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मनचाहा साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है, लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज़ में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

0: सुन के मत वाले काले बादलों का शोर
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में एसआईआर शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ एसआईआर की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ताश्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्यभर में आज हुल दिवस के मौके पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के शहीद महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हुल क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारे वीर पुरखों का संघर्ष ही हमारी पहचान है और उनका बलिदान हमारी शक्ति है।
1: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
0: इधर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हुल दिवस पर संथाल हुल के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके संघर्ष को जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। झारखंड में एसआईआर आज से शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी तोरपा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ और बीएलए 2 की बैठक का निरीक्षण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने सरायकेला में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कार्य योजनाओं की समीक्षा की।
2: आज जो है ये सारे चीज कार्यक्रम की विवरणी आपको उपस्थित होकर बताया जा रहा है, जिसमें नए वोटर को जोड़ने की आहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2026 है। बीएलओ द्वारा घर घर का दौरा किया जाएगा जो आज से शुरू हो रहा है 29 जुलाई तक, जिसमें कि इन्यूमरेशन फॉर्म प्रत्येक मतदाता को 2-2 इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा

0: उधर हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि जिले में लगभग 81% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, वहीं जिनका मैपिंग नहीं हुआ है उन्हें प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
1: 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक सभी लोग अपना गणना प्रपत्र भर करके बीएलओ को वापस कर दें। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस समय उपलब्ध नहीं है अपने मतदान केंद्र में, अपने घर में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका कोई नातेदार वो पीडीएफ बना करके उनको मोबाइल पर भेज दें, वो प्रिंट आउट निकाल करके उसको भर करके सिग्नेचर करके पुनः पीडीएफ वापस कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसको कंसिडर करेंगे और वो गणना प्रपत्र मान्य होगा और उनका मतदाता सूची में जो ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाना है 5 अगस्त को, उस ड्राफ्ट प्रकाशन में उसका नाम आ जाएगा।
0: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 2 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धनबाद जिले में सहकारी सप्ताह समारोह शुरू हुआ। जिला सहकारिता पदाधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता के आंदोलन को लोगों तक पहुंचाना, समितियों को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक और सामाजिक विकास को गति देना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से कल 4थी मौत दर्ज की गई। उपायुक्त राजीव रंजन ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली।
3: वही देखने हम लोग आए थे, यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ ब्रेन मलेरिया वाले पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, खास करके बच्चे हैं, तो ज्यादातर की स्थिति ठीक है। यहाँ पे कई लोग तो रिकवर कर गए हैं, एक दो बच्चे हैं जो भी सीरियस हैं, तो उनको जो बेस्ट दिया जा सकता है ये डॉक्टर साहब लोग सब प्रयास कर रहे हैं, उनको दवाई ववाई सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ अवेलेबल है।
0: वहीं जिले के चिकित्सा पदाधिकारी साहिर पॉल ने बताया कि प्रभावित गाँव में जाँच के बाद 43 लोगों में ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई। वहां निगरानी, जांच और उपचार अभियान चलाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। आईटी, मेटल और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयर कमजोर बने हुए हैं। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह और हजारीबाग में बादल गर्जन के साथ बारिश का अनुमान जताया है। जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हुआ है। गोल्डी मिश्रा

0: और आदित्य वाधवा एशिया कप स्टेज टू स्टेज थ्री और एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में ईरान चीन और दुबई में खेलेंगे। वहीं के युक्ताश्री का चयन एशिया कप स्टेज टू और स्टेज थ्री के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में एसआईआर शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ एसआईआर की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ताश्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है, लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में, तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं। तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं, और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा। ये जो हमारे साथियों ने बताया है समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, दुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है, मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गोराई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूं समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक कौशोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक कौशोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूं, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही हैं कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफी नजदीक रहती हूँ, अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं, लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएं जब आप समंदर के किनारे हो। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी, केरला के कोवलम बीच की सैर करके

आई हूँ, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है, जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में जरूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूं, धर्मपत्नी का नाम लिखकर आई लव यू भी लिखता हूं और सबको बुलाता हूं, तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहां का वीडियो भी सेव करके रखता हूं। हां, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नजारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो समुन्दर के किनारे रहती हूँ। मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियां इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीजें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियां मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मजे लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नजारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता रास का जिक्र किया, इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगे उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल। क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई, हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक शहर की याद नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं, जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं, लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुंचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुंचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहां तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई, वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था, एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में, रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहां आज भी दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुए, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं। और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं, कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं, हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है, क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है, शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहां व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफर तय किया, सुरीला सफर। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना। जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं। कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। कोई गाना गा रहा होता है, उसमें ही खो जाता है। और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है, और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, शराब,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा है।

0: शेख चिल्ली का ये ख्वाब, अरे एक जर्रे की ये जुर्रत, छूना चाहे आफताब।
1: किबला खादिम पे न कीजिए इस कदर गुस्सा फिजूल, मैं हूँ आशिक इश्क में

मैं बाप कहूंगा, फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा। ये जो कहे मैं भी कहूँ कांटे को गुलाब, कांटे को गुलाब। अरे हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब, ए हमको तो नशा

0: मोहब्बत का जनाब।
1: शौक कब आता है, कहां से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है। और करते करते, लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर, किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के जमाने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है, और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

अब एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी, तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो जरूर बना लीजिए।

अब एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है ये कैसे पता करें। बहुत आसान है, माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचाने, तो सबसे पहली चीज यह देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं। जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।

0: जिले के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @

0: या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है।

विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ, एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी जिले के तुरपा प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने कई मतदाता केंद्रों पर

0: मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उधर लोहरदगा जिले में इस अभियान का जायजा लेने आज खुद जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना मतदान केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने बंगला रोड स्थित आयशा कच्छी उर्दू बालिका विद्यालय के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को गणना प्रपत्रों का जल्द वितरण करने और समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों से भी अपील की कि वे आम जनता को इस अभियान के प्रति जागरूक करें।
1: 7 अक्टूबर को फाइनल जो वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होना है, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी हम लोग जो 30 जून से लेकर 29 जुलाई हमारे सारे बीएलओ जो है नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता है वो हस्ताक्षर करके वापस करेंगे और जिनका एनुमेरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान 11 अक्टूबर को पटना में जयप्रकाश नारायण जयंती मनाने का आह्वान किया। उन्होंने झारखंड सरकार पर विकास कार्य रोकने का आरोप लगाया और कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बताया।
2: अब यहाँ का पहाड़, यहाँ का पत्थर, यहाँ का गिट्टी और यहाँ के लोगों को 300 उसके अलावा जीएसटी वाला बालू का टेंडर नहीं हो रहा। ये विकास अवरुद्ध है, सड़कें टूटी फूटी, बीच में थोड़े बहुत रिपेयरिंग हुए हैं, नहीं तो कोई अच्छी सड़क में आज विकास के लिए पैसे नहीं है। अब आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो और यहाँ घोषणा कर दिया कि हम इतना रुपया, ये जो जनता को खरीदने की बात जहाँ जहाँ भी होती है राजनीति इस रूप में नहीं होनी चाहिए।
0: राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11:30 बजे लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज हुल दिवस शौर्य और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को नमन करने के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू सहित तमाम वीर शहीदों को नमन किया। उधर उपराजधानी दुमका में संताल होल दिवस के अवसर पर पोखरा चौक स्थित सिद्धो कान्हू और फूलो झानू की प्रतिमाओं पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता सीता सोरेन ने इस अवसर पर सरकार की विकास नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि विधायक बसंत सोरेन ने जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प दोहराया।
3: मैं इतना ही कहूंगा कि आज के दिन को लोग जरूर याद करें, जरूर मनाएं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए, उन्हें अनुसरण करते हुए अपने जीवन को प्रेरणा के तौर पर एक उनके द्वारा कार्य जो उन्होंने किए हैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें।
0: रांची के गढ़खंडा में खेत बचाओ अभियान के तहत एक किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से वैज्ञानिक और जलवायु अनुकूल खेती अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 500 से अधिक जनजातीय किसानों के बीच उन्नत बीज और कृषि किट बांटे गए। जामताड़ा के दुलाडीह स्थित प्रखंड रिसोर्स सेंटर में आज विशेष विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल पर सचिव पवन कुमार ने कहा कि सभी दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण कर उन्हें जरूरी उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। शिविर में विकलांगता प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनिए, सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे,
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है, पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ,
3: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक, एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
3: तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं।
1: कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
3: हाँ,
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो पता चला खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है,
1: हाँ,
3: सिक्का निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिख कर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मोहरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना
1: ऊपर से पानी।

0: पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते,
1: माता पिता पानी पानी हो जाते, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
0: पोल खोल देते हैं। सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
1: तो मजा आ जाता है,
0: मजा आ जाता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति।

0: गुप्ता जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
1: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
0: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है और उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
1: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
0: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
1: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
0: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
1: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
0: अब सरल भाषा बच्चों के लिए, यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर
1: क्या होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
0: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर, बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
1: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
0: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो BBC की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
0: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
0: या चिड़िया ने छू लिया।
1: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
0: ये गंदी।
1: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
0: और,
1: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
0: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी,
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है। तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती
0: प्रमाणित करती हैं कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है।
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें भी सब काम
1: जाया करो ट्यूशन स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी समझ। फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा। मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
0: हाँ, तो इनके मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है, अभी 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस न चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
0: हाँ, हाँ। और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
1: हाँ
0: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
1: नहीं। और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं, उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों

0: ऊपर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों के शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम नहीं लेती
0: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली, और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था, और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उस सारे कपड़े निकाल और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया। ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था, और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना। तो भाई ये कुछ
1: उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनके उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें

0: कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाया भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत होती
0: तो
1: है।
0: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया। और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे।
0: हाँ।
1: उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया।
0: हाँ।
1: तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: हाँ, मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना। तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है। तो भाई वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी अलग होने लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहां था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट। आई लव रेडियो सिंस माय चाइल्डहुड। विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया। विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है। और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता। बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है।
1: पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे

0: में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ सजना

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं। एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे,

0: तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं,
1: सब पोल खोल दी।
0: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
1: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएं कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा लिया।
1: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा,
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीनकर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, और घर वालों ने किसी ने देख लिया
1: तो पानी पानी हो गए।
0: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्मपत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
0: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
1: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे,
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया है कि भोगनाडीह को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोगों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। धनबाद में आज हुल दिवस पर वीर सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि दी गई। बरमसिया पुल चौक पर विधायक राज सिन्हा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों का अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेगा। सिमडेगा में भी आज हुल दिवस पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू को याद किया गया। आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को नमन किया। दुमका के शिकारीपाड़ा से विधायक आलोक कुमार सोरेन ने आज क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हुल दिवस के मौके पर उन्होंने पांच पहाड़ी, जीवनपुर चौक और जगदीशपुर सहित कई जगहों पर शहीदों को नमन किया। पलामू के पोखराहा और जोड़ में ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। पांके विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे का काम पूरा होने तक जोरकट टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली रोकने की भी मांग की। रामगढ़ के पतरातू में आज युवा राष्ट्रीय जनता दल की युवा संवाद चौपाल यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजद की नीतियों और लालू प्रसाद की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: फिल्म मुल्क
2: सब सखी युग पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा
1: और फिल्म थप्पड़
3: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर मनसा है।
1: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
4: ए बेखबर। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
4: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
5: हाँ।
4: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्मी दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
5: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
4: तो मुल्क के। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताए और रचना प्रक्रिया बताए।
5: मुल्क का गाना आप सुनाए पिया समाए
4: जी,
5: बहुत अच्छा गाना है,
4: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
5: हाँ।
4: कव्वाली है।
5: यस यस,
4: कव्वाली के शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
5: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
4: जी, बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
5: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
4: जी,
5: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी है जो याद की जाएंगी,
4: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
5: जिक्र किया जाए,
4: दर्ज होती है आज के समय।
5: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
4: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चलिए, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
5: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप जी, बिल्कुल।
4: तो
5: आर्टिकल 15 से,
4: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
5: उस गाने की कहानी ये है कि
4: कोई दिलचस्प बात हो।
5: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
4: पड़ा है इजाजत फिल्म
5: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
4: अरे क्या बात है।
5: हाँ, उल्टा मतलब कि
4: तो, सामान देना है।
5: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
4: हाँ,
5: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
4: हाँ,
5: ठीक है,
4: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
5: तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत

0: में जो दो लोगों के आपसी जो मूवमेंट्स होते हैं है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
0: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो। हाँ। लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ, वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
1: जी। हाँ, तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
1: क्या बात है, वाह।
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं, तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था, जो गुलजार साहब का था ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: ये भी गाना लिख दो जल्दी,
1: और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था,
0: और मुल्क में
1: एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है, अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए, ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी,
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है।

0: ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लगा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल, दो अर्थी,
0: तो हाँ, तो ये दो अर्थी, ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे,
1: रंग दिखाई,
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भाई
0: में उजली,
1: वा, वा।
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ,
1: जी जी,
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था, और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना, हाँ, भी संदेश, हाँ, देता है, सब एकजुटता का संदेश,
0: बिल्कुल,
1: है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में, फिल्म धोखा।
1: हाँ,
0: एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं।
1: मतलब क्योंकि आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जब वो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
0: जी।
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी,

0: और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
1: जी।
0: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर
1: जी जी हाँ।
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी। जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं हाँ। ये गाना

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर।

0: IIT प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धंधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल,

0: आरुषि ओशिका आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखते हैं,
1: आंगन का पेड़ घर की शान देता है छाया सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार, आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ
1: इतिहास की भूगोल की साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी
0: जरा सोचिए तो क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच कोयला लोहा तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की, लेकिन अजीत जी पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी।
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी तो विमलेश जी ये तो हुई खनिज की बात, अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पति और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई लेकिन ऐसा कैसे, जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों, ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओं, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा। बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खो देंगे भाई, खो

0: ही कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोगंजे भाई खोगंजे, हम सब मिलकर एक साथ, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाँव गाँव गाँव।
3: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन?
4: कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
4: कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
2: तो ये बात हाँ, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
6: क्या
4: क्या
6: क्या?
2: पूजा सब तक कोयल गाए, सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
2: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
2: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में इस जंगल में, खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
2: का का का।
8: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपी हना पिए तुझा पानी।
1: काँ, काँ, काँ। अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ, भौ, भौ। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ, भौ। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ। शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ, काँ। अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
6: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
5: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
5: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
6: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: वो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं,

0: कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
1: चलो।
0: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: ये मर गया?
1: क्या पता?
0: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में आज से SIR अभियान शुरू हो गया है। गढ़वा में इसके तहत घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि इस अभियान में BLO मतदाताओं की मैपिंग साल 2003 की मतदाता सूची से सुनिश्चित करेंगे। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयर हाउस का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों के रख रखाव का जायजा लिया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए वेयर हाउस की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र के बालसगरा गांव में भूमि विवाद को लेकर गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है। मांडू के विधायक निर्मल महतो ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि शहर में अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन पूरी तरह विफल है। सरायकेला खरसावां में आज हूल दिवस पर ग्रामीण एकता मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। खरकई नदी के माजना घाट से शुरू होकर

0: यह यात्रा पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य अंतरों के साथ सिद्धू कान्हू पार्क पहुंची। यहां ग्रामीणों ने वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जल जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के अलका बहन दने से जोहार प्रणाम और अपन एक कार्यक्रम में स्वागत है। और ये कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और आज हमारे साथ हथी कार्यक्रम में उमेश भाई, तो तोरा भी जोहार प्रणाम।
1: जोहार प्रणाम अलका बहन। और आज के कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के फिर से एक बार हम अपन दने से भी स्वागत करो ये। और देखा भाई, हम इन अपन कार्यक्रम में कई तरह के जानकारी लेकर आओ ये उनकर खती ले। और सबसे पहले हम तोहर से जानना चाहबो कि तुहर हालचाल का चल रहे हो और खेती बाड़ी के तू का तैयारी कर ले है।
0: देखा हमने के हालचाल ठीक हो, आज फूल दिवस हो, सबके शुभकामना दे वो ये। और अभी देखा कि हमने जे खेती बाड़ी के जे काम करे थे वो उमेश भाई, कि अभी खरीफ फसल के समय हो, खरीफ फसल के बुवाई के समय हो और रोपाई के समय हो, यानी समय हो हमने के धान के नर्सरी तैयार करे के, कहीं कहीं बारिश हुए तो नर्सरी तैयार करे के ओकर वास्ते रोपाई करे के हो तो। और फिर जैसे मकई उके तो बहुत जगह लग गेले हो, या राहड़ उड़द मूंग सोयाबीन मूंगफली मतलब ये सब बादाम उदाम हमने के बुआई के जगह जगह छोटा छोटा कहीं कहीं जगह पे लगे ले ही हो। और फिर ये सब चीज के काम हमने के देखभाल के जो सब्जी लगल हो कर चले थो, तो कहला कि जे ये महीना हो हमने के उमेश भाई, ये समय हो हमने के खरीफ फसल के बुआई और रोपाई के, और एकरे में हमने सब कोई लगल है, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाए ने उमेश भाई कि बुआई के वास्ते हमने के बीज कैसन चाहिए।
1: हाँ हाँ, ये सही बात तू कहला कि भाई देखा हम इनके जे बुआई करे से पहले जो है उन्नत किस्म के बीज लेवे के चाहिए। और देखा एकरा उपयोग करा, और सबसे पहले बात है ना कि ओकरा बीजो उपचार जरूर करा।
0: बिल्कुल,
1: अपन खेत में जो है उचित अगर तोहर पानी के निकासी के व्यवस्था हो तो, ताकि जो है से तोहर जो वर्षा हो तो ना ओकर से जल भराव न हो तो और ओकर से फसल के नुकसान न हो तो।
0: बिल्कुल,
1: तो एकर खातिर हम इनके जो है बीजो उपचार करना जरूरी है। जहाँ तू नर्सरी कर ले यानी कि धान के जो बिहन कर ले तो वहाँ जो हम इनके पानी निकासी के व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी हो।
0: बिल्कुल, यानी कि समय जरूरी रहे है कि एक अच्छा फसल के वास्ते जरूरत रहे है।
1: हाँ,
0: एक अच्छा बीज की
1: बिल्कुल।
0: और पौधा के बढ़वार के जरूरत रहे है कि ओकरा सही मतलब जमीन मिले।
1: हाँ,
0: यानी कि अगर बारिश बहुत ज्यादा हुए थो और अगर लगे थो कि तोतनी के हमने के खेत या बाड़ी में पानी जम गेले है तो ओकरा पानी के निकासी जरूर करिए। और ओकर बाद बीज है तो कोशिश करना चाहिए कि हमने के कोई पंजीकृत दुकान जो रजिस्टर्ड दुकान हुआ है ओकर से ही हमने बीज खरीदे। अगर बीज तोर स्वस्थ रह तो तब तोर जब फसल हो तो वो तोर बेस हो तो।
1: एक बात और ध्यान रखना है कि देखा हम इनके अपन फसल में जो है जो तू बिहन कर ले हा, चाहे धान के जो नर्सरी तू कर ले हा, बहुत दिन की भाई अब जैसे श्री विधि से भी बिहन करो थी भाई, और देखवा की कई तरह के उनका जो है अपन अपन तरीका है, तो ओकर भी कहे की भाई हम इनके जो समय समय पर निराई गुड़ाई भी करना हो।
0: बिल्कुल,
1: और देखा कि हम इनके अपन संतुलित मात्रा में ज्यादा न अपन गोबर खाद के देना हो, केचुआ खाद के, ताकि जो है धान के रोपाई करे समय थोड़ा खेत में पानी के जो है बढ़िया से व्यवस्था करे के जो है जरूरी न पड़तो।
0: बिल्कुल, यानी कि हमने के खेती में

0: कोशिश करना चाहिए कि हम एक जैविक खाद के प्रयोग करिए, जैविक उर्वरक के प्रयोग करिए, एकर से का हो जाए कि हमने की जमीन जो है उस मतलब स्वस्थ हो, तो माटी स्वस्थ हो जाए तो और उसका किसी तरीका के देख ले जैसे कि हमने खाना खा तो कहा जाए ना कि स्वस्थ शरीर वास्ते संतुलित भोजन की जरूरत रहे, वैसे ही अगर माटी के अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो ओकर में संतुलित ओकर में खाद उर्वरक सब चीज के जरूरत पड़ो है।
1: एक बात और देखा कहल चाहे ना अलका बहन की भाई, देखा जुलाई महीना में जो है हम इनके काम बड़ी तरह से बढ़ जाए,
0: बिल्कुल
1: देखवा के हम इनके गांव में किसान भाई बहन जो है तुझे भाई घुरान घोर ले तू तो मकई लगवे था तू, जो बड़ी किसान भाई बहन मकई लगा देती बहुत मकई लगवे था तू, देखवा के इन्हें खेत की आरिम जैसे हम अभी जो बतिया थी कि धान के जो है से हम इनके बिहन भी करे खो बिचड़ा तैयार, तो एकर में का है कि अपन आयर के भी मरम्मती करना जरूरी,
0: बिल्कुल सबसे ज्यादा मेड़ की जरूरत रहे, जैसे की अगर तुर मेड़ मजबूत नहीं
1: रहते
0: तो अगर पानी की जरूरत
1: बारिश सब पानी जो है से तोरा खेत से सब निकल जितो, अरे देखवा नहीं कि भूस जो है से तोरा खेत की आरी में पूरा जो है से एकदम अपन जो लतर बना दिले तू तो ओकर से कहे कि तोरा पानी तो गोबर भी छीट ले, अगर किसान भाई बिन गोबर छीट लेते तो ओकरो जो है से पानी से सब बह के चल जितो,
0: बिल्कुल यानी कि हमने की बरसात शुरू होने से पहले या बरसात लगे तो अब ज्यादा हो जाते तो जरूरत रहे जैसे हमने के जमीन के मतलब रोपाई कर रही है जोताई कर रही है या खाद डाल रही है तो वैसे ही हमने के मेड़ मरम्मती के काम जरूर करे के चाहिए, और ई मतलब महीना है ना उमेश भाई कि कीड़ा और रोग के भी प्रकोप बढ़ो,
1: बिल्कुल देखवा कि बारिश हो रहा तो बारिश में का है जैसे हम इनके किसान भाई में साग सब्जी लगे ले तो देखवा कभी मरचाय के नर्सरी हो रहा तो फूल गोभी रोप रहन तो बिलौती रोप रहन, देखवा की सब तरह से जैसे अभी सब नर्सरी कर ले तो रोपाई भी कर ले तो,
0: बिल्कुल और उस महीने में देखवा कि पौधा पे हमने के बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरीका के कीट के प्रकोप तो नहीं आवे थे, रोग तो नहीं आवे थे, तो एकर वास्ते हमने के जैसे बहुत बड़ा जमीन में हमने खेती करे था फिर भी हमने के हमेशा फसल के ध्यान देते रहना है देखते रहना है, और अगर लगे कि हमने के पौधा जो लगे ले जो भी फसल लगे ले उसमें किसी तरीका की बीमारी है तो कृषि विभाग के सलाह के अनुसार यानी कृषि विभाग के सलाह के अनुसार जो दवाई बतावल जाए उस दवाई कि हमने प्रयोग कर सकल ही अपन फसल के सुरक्षित रखे वास्ते,
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई, देखा हम इनके जो है दवाई कई तरह से है जैसे रोगर हो गलो डायथेम 45 हो गलो तो और देखवा कि एक क्रम में जो है से मेरा कुलान है हम इनके देखा कि हर बीमारी के अलग अलग जो है दवा है और ओकरा हम इन जो है से बेस्ट तरीके से देखवा एक चीज और ध्यान रखना है कि दवाई छिड़काव करे से पहले हम इनके मौसम के देख लेना है कि अगर मौसम तो हर कैसन हो, जैसे तू दवाई छिड़काव कर दिला तुरंत बारिश हो गलो तो वो तोहरा कोई फायदा ना करता,
0: बिल्कुल आजकल तो देखा ना मोबाइल में तोरा हर बार मौसम के पूर्वानुमान बता,
1: बिल्कुल
0: आजकल तो मतलब पहले जमाने में आदमी के पूर्वानुमान अपन से करे लेकिन आजकल मोबाइल के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा या किसी भी टीवी के द्वारा बतवल जाए कि अभी के मौसम यहाँ हो सकल हो इतना दिन के बाद ज्यादा तेज बारिश की है, तो हमने के मौसम के पूर्वानुमान जरूर देखकर हमने के खेती के काम करे के चाहिए, और जो सब्जी के बुआई और पौधा के रोपाई साथ ही करे के चाहिए मतलब एक बार करना चाहिए, और साथ में हमने कर सको ये कि जे जगह जे जमीन हमने के खाली है यही मौसम में पशु वास्ते हरा चारा के फसल बो देना चाहिए, और एक से का हो जाए कि जब हरा चारा लगे ले आने तो तोरा गोरु डांगर वास्ते चारा वास्ते तोरा दिक्कत ना हो तो तोरा मिल जे तो, और उकर में हरा चारा जब लगे ले है तो जमीन वास्ते भी बहुत बेस हो, और एकर साथ में अपन भी हमने के ई मौसम में शरीर और स्वास्थ्य के खास ख्याल रखना चाहिए, काहे कि देखवा बारिश के मौसम है हमने के खेत पथर में जाए पड़े है काम करे वास्ते तो कीड़ा सांप सबके डर रहो है, तो एकर से हमने के अपन बचाव करते हुए काम करे के चाहिए,
1: देखा ना तोरा सोनेल मिल तो की जे है ऐसे फलनो के बेटवा के सांप काट दिले, तो देखा कि एक बात और हम कह चाहे हम अपन किसान भाई बहन के कि देखा अगर तोरा जो है बिच्छू काट दिलो चाहे सांप काट दिलो तो देखा झाड़ फूक के चक्कर में मत रहा,
0: बिल्कुल
1: अभी देखवा कि कल है तू समाचार पत्र में देख लेबा कि तोरा ईंट खोरी तरफ चौपारण तरफ एगो बच्चा के सांप काट ले चार घंटा तक झाड़ फूक करते रहते, तो कहीं ना कहीं देखा अब जो है हम इनके समाज पढ़ लिख भी गले खेती बाड़ी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी और समझदारी भी जरूरी है, देखा कि अगर कोई तरह के भी सांप काट दिलो सबसे पहले सरकारी अस्पताल जा, वहां तोहरा जो है से स्नेक बाइट है वहां जो है से सांप के जो है कई तरह से टीका भी मिलो है, तो देखा कि एकर से हम इनके कहा है कि भाई सबसे पहले चिन्हित करल जाए कि कौन सांप काटलो है कि एकर बीस के कितना जो है से नुकसान है, तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके जो है जैसन के तो कहला कि मौसम में हम इनके सांप बिच्छू से भी कीड़ा मकोड़ा से भी जहरीला होती है ओकर से बचना है,

0: कहीं ना कहीं देखा कि हम इनके इस सब बात के ध्यान देना है ताकि हम इनके जो है भारी नुकसान न हो जाए।
1: बिल्कुल, और देखा हम तो आगे बातचीत और भी करवे, लेकिन रुके ये सुने ही एगो जरूरी संदेश।
0: बिल्कुल,
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का।
3: कला बोल रहा
2: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
3: परंतु सब ही डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल समेत नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आते जल्दी खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: तो देखा अभी हमने सुन लिया जरूरी संदेश उमेश भाई, तो अब हमने कार्यक्रम में सुना ही एगो लोकगीत।
0: बिल्कुल सही बात कहला भाई, देखा किसान भाई बहन भी आशा में थे कि हम इनके मनोरंजन खातिर एगो बढ़िया लोकगीत सुने थे। चाहवा सुनल जाए
1: लोकगीत।

0: तो देखा भी हम गीत ना सुनलिए, आशा करिए कि भाई किसान भाई इनके बेस लगले होते अब जानकारी कितने चलो ये।
1: तो देखा आज ये किसान महिला किसान हथी उमेश भाई जे खेती बाड़ी के काम करो थी, परिवार के साथ मिल के करे थी, अपन छोटा स्तर पर ही खेती करे थी, अजय सब्जी हो हन हाँ
0: हाँ।
1: ओकरा बाजार में खुद भी जाके बेचे थी। तो आज ये हमने पहले जे जानकारी सुन लेबे
0: हाँ हाँ। कि
1: का काई सब्जी लगे ले थी और कैसे देखभाल करे थी और बतवे थी संगीता देवी और इनका से बातचीत कर ले थी
0: अलका कुमारी।
1: तो सुनल जाए जानकारी भरल बातचीत।
0: बिल्कुल तावा सुनो ये जरूरी।
2: समय समय पर हम आप सभी को ऐसे किसान भाई बहनों से मिलाते हैं जो अपने अनुभव को बताते हैं और बताते हैं कि वो खेती बाड़ी किस तरीके से करते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ एक महिला किसान जुड़ी हुई हैं जो कृषि कार्य भी करती हैं और फिर जो सब्जियों का उत्पादन होता है वो बाजार में भी जाकर बेचती हैं। तो आज मिलते हैं ऐसे ही महिला किसान से। तो नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो जानते हैं सबसे पहले इनका परिचय। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आपका नाम क्या हुआ?
3: संगीता।
2: संगीता देवी। अच्छा आप कहाँ की रहने वाली हैं?
3: रोला।
2: रोला की रहने वाली हैं। अच्छा अच्छा। तो आप तो कृषि कार्य खेती का काम करती हैं, देख रहे हैं बहुत सारी सब्जियां भी है आपके पास। तो आप अपने बारी में या खेत में अभी क्या क्या लगाई हैं?
3: मक्के लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, फरस बीन लगाए हैं, बोधी लगाए हैं।
2: अच्छा तो मक्का, फरस बीन, भिंडी, बोधी सारा लगाई हैं। तो जो ये जो सब्जियां लगाती है वो अपने अकेले करती है कि आपको कोई मदद करता है?
3: घर परिवार,
2: घर परिवार वाले लोग सारे
3: अकेले होगा, थोड़ी
2: अकेले नहीं होगा ना, तो सारे कोई मिलके करते हैं। तो मकई कितना लगाई है?
3: मक्के आधा पाव लगाए हैं।
2: आधा पाव लगाए उतना हो जाता है, बाजार में भी निकल जाता है?
3: तो खाने वास्ते लगाते हैं, थोड़ा मोड़ा होता है तो चल
2: थोड़ा बहुत बाजार में भी बेचते हैं। अच्छा तो सब्जी क्या क्या लगाई है आप अभी?
3: अभी भिंडी लगाए हैं, फरस बीन लगाए हैं, बोधी लगाए हैं।
2: तो जैसे जो मकई लगा रही हैं तो मकई में तो बहुत कोड़न का जरूरत पड़ता है,
3: उगेगा तो उसको कोड़न।
2: हाँ, धूप उगने के बाद। तो अभी जैसे सबसे पहले आप उसमें क्या की थी?
3: अभी
2: जमीन तैयार की,
3: जमीन पहले तैयार किया, उसको जोत कोड़ किए, घास उसको चुने।
2: अच्छा तो ये आप परिवार के साथ मदद के साथ करती हैं?
3: अकेले हो गई सब।
2: अच्छा तो सब परिवार के साथ मिलके पहले जुताई कर लेती हैं। घर के बगल में ही बारी है कि कहीं दूर में?
3: दूर में
2: दूर में है, तो वहाँ जाकर आप

0: करती हैं। अच्छा ठीक है, तो मकई आप लगा ली है? लग गया है। अच्छा, तो बीज को आप जो लगाती है वो मतलब उपचारित करती है जो बाजार से खरीदती है या घर का ही बीज?
1: बाजार के बीज रहता है,
0: बाजार का।
1: घर के बीज तो कुछ हो भी नहीं करता आजकल।
0: अच्छा, आजकल पुराना बीज पहले जैसे जमीन में हो जाता था?
1: अब नहीं होता है।
0: अब नहीं होता, बाजार से खरीदना पड़ता है। तो जो दुकान से लेती है वो पंजीकृत रजिस्टर्ड दुकान से लेती है? ऐसे ही कोई
1: छोटा दुकान से, हम ज्यादा नहीं लेते हैं जो देगा।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद जैसे हर साल लगाती होंगी तो हर साल मकई का उत्पादन सही से हो जा रहा है?
1: हर एक साल नहीं होता है,
0: कभी कभी हो
1: जाता, कभी हो जाता कभी नहीं होता।
0: अच्छा, और उसके बाद कितनी बार कोड़न करती हैं?
1: भगवान जब धूप उग जाता है 2 बजे कोड़न देना
0: जरूरी होता है।
1: जरूरी होता है।
0: अच्छा, तो जब जैसे बीज लगाई मतलब जुताई करने के बाद बीज लगाई, उसके बाद आपने क्या किया पानी वानी पटाने के लिए?
1: उसके बाद पानी पटाते हैं, फिर
0: पानी पटाने का सुविधा क्या है?
1: मशीन है,
0: मशीन से हो जाता है ना। अच्छा, और बारिश भी हो जाता है तो
1: बारिश से हो जाता है
0: तो उससे फायदा हो जाता है। और सब्जी में मतलब मकई में अभी एक कोड़न एक बार भी हुआ है?
1: नहीं, तो
0: अभी तो कब लगा?
1: परसों लगा के आए, पानी भगवान दे दिया।
0: अच्छा, परसों लगाए, पानी आ गया, अब धूप होगा तब आप
1: बड़ा होगा तब कोड़न करने बनेगा, तो ठीक है, ना बनेगा फिर उसी तरह।
0: अच्छा, तो जैसे धूप आएगा लगा कि अब कोड़न करने का जरूरत है तो आप कर ली। अच्छा, ये जो भिंडी लगाई है या फिर और जो सब्जियां लगाई उसके लिए आप उसी जगह में लगाई है, उसके लिए कैसे कैसे क्या कुछ खास तैयारी करना पड़ा था आपको?
1: उसी तरह,
0: उसी तरीका से जमीन तैयार करना है, बीज लगाना है और खरपतवार को हटाते रहना है। अच्छा, कितने कितने दिनों में खरपतवार को हटाती हैं?
1: घास उस हो गया उसको चुन बीज के हटाना है, फिर उसको कोड़ चाल के फिर उसको पास देना है।
0: तो भिंडी कब लगाई है?
1: परसों ही लगाए, सब एक के दिन लगाए,
0: परसों ही लगाई है। तो भिंडी अभी कल परसों लगाई है, मक्का भी लगाई है और बीन्स भी लगाई है, और क्या लगाई है?
1: बस इतनी ही लगाई,
0: 3 चीज लगाई। तो इसमें देखभाल के लिए कुछ खास करने का जरूरत पड़ता है?
1: दवा वो डालना पड़ता है,
0: दवा डालना पड़ता है कि जैसे उसमें
1: मरेगा, कुछ बीमारी
0: आएगा तब दवा। तो कौन कौन सी बीमारी का देखा जाता है कि उसमें डर रहता है? जैसे मकई आप लगाई हैं तो किस तरीका का बीमारी का डर रहता है उसमें?
1: कीड़ा हो जाता है तो उसमें दवा डालते हैं,
0: कीड़ा हो जाता है तो उसको देखभाल करते रहते देखते रहते हैं कि कब लगने वाला है,
1: फिर दवा डालने से फिर सुधार हो जाता है,
0: दवा डालने से सुधार हो जाता है। और फिर ये भिंडी में भी तो वैसे ही कीड़ा का डर लगता होगा, तो भिंडी में भी वही उपाय करती है। अब बीन्स कैसा लगाई है? लतर वाला है ना, उसके लिए क्या क्या उसके लिए कुछ खास अलग से करना पड़ा था?
1: नहीं
0: करना। तो जैसे जो भिंडी और परवल लगाई है संगीता जी, कब तक ये तैयार होगा?
1: 2 महीना 3 महीना तैयार हो जाता है,
0: देर बढ़ेगा तब ने 2-3 महीना में तैयार हो जाता है। तो अगर जैसे उत्पादन अच्छा हुआ, आपका मौसम अच्छा हुआ, मतलब लगा कि किसी तरीके का बीमारी नहीं हुआ, और अगर फसल अच्छा होता है तो उसका उत्पादन ठीक होता है, सही हो जाता है,
1: सही होता
0: है। तो इसको बाजार में बेचती हैं आप? जाती हैं
1: बाजार में? जाते हैं, पर इधर ही आते हैं।
0: अच्छा, इधर से आप अपने से बेच लेती हैं? जैसे फसल मतलब सब्जी ये लगाने में सारे परिवार वाले मदद करते हैं, लेकिन जो आप सब्जी बेचने निकलती हैं वो अकेले निकलती हैं। और अच्छी बात है कि आप महिला होकर खेती भी कर रही हैं, इसके साथ आप अपने साथ कुछ और भी ऐसा काम करती हैं? बस सब्जी ही लगाने का काम करती हैं। अच्छा, अभी तक में सबसे अच्छा कौन सा सब्जी हुआ है जिसमें आपको लगा कि हाँ ये सब्जी बहुत अच्छा?
1: अभी मेरा यही निकल रहा है
0: परवल। आपको सही से परवल सही से निकल रहा है? ये जेठ में लगाई थी? अच्छा, ये कब लगाई थी जो आपको लग रहा है कि संतुष्टि के हाँ परवल में हमको मेहनत नहीं लगा है, बहुत अच्छे से हुआ है?
1: मेहनत तो इसमें न है,
0: मेहनत नहीं,
1: इसमें दवा भी न डालना है,
0: और परवल में दवाई वगैरह का भी जरूरत नहीं पड़ता है, और फिर ये उत्पादन अच्छे से हो जाता है। अच्छा, तो आप अपनी जब खेती करती हैं तो जमीन में कौन सा खाद, गोबर खाद उपयोग करती हैं?
1: गोबर देते हैं, पानी देते हैं,
0: गोबर पानी देते हैं। कभी जैविक खाद का उपयोग किए हैं?
1: नहीं
0: किए हैं। आपको पता है जैविक खाद उपयोग करना? रासायनिक करती हैं?
1: नहीं,
0: रासायनिक खाद का उपयोग करती है? नहीं, तो मतलब बिल्कुल गोबर खाद से ही जो आपका फसल का, तो आपका तो सब्जी बहुत ही अच्छा है, जिसको कहते हैं कि अगर रासायनिक खाद के बिना अगर कोई
1: हम लोग जानते नहीं करते, जानकारी भी नहीं, लोग करवे नहीं करते हैं तो कहाँ जानेंगे।
0: अच्छा, तो वो सब नहीं करती हैं?
1: वो सब सहयोग करेंगे तब ना जानेंगे।
0: ठीक है, तो मतलब गोबर खाद से जो भी सब्जी हो जाता है उसी को आप करती हैं। आप रेडियो सुनती हैं? कौन सा कार्यक्रम सुनती हैं?
1: किसान वाला
0: कार्यक्रम सुनती हैं। अच्छा, इसमें जैसे किसान के बारे में या किसान के अनुभव के बारे में जो बताया जाता है, जैसे खेती बाड़ी करते हैं और कोई नई तकनीक का उपयोग करते हैं, तो इससे अगर आप सुनने से आपको लाभ मिलता है?
1: मिलता है,
0: मिलता है ना। और इसमें तो कृषि विशेषज्ञ भी अपनी जानकारी को देते हैं कि देखिए अब समय बदल गया है, अब खेती का स्वरूप भी बदल गया है। लोग पहले जिस तरीका से खेती थी करते

0: थे, अब खेती का आधुनिक तकनीक का उपयोग हो गया है। देखिएगा कि ट्रैक्टर या फिर पावर टिलर, मतलब बहुत सारे मशीन का उपयोग करते हैं, हाँ उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मतलब बहुत सी बड़ी सी जमीन लेकर एक बार लीज पे करते हैं, तो ये बहुत सारे किसानों का अनुभव भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को मिलता है। आप लाभ लेती हैं?
1: हाँ
0: लेती है ना। अच्छा तो ये जैसे अगर भिंडी मकई हो जाएगा उसके बाद आप क्या लगाएंगे?
1: उसके बाद फिर आलू लगाएंगे।
0: उसके बाद आलू लगाने की तैयारी करेंगे। ये भिंडी मकई का कब तक हो जाएगा सारा, जब बाजार तक आ जाएगा?
1: घर बरसात में नहीं उसी तरह रहेगा,
0: बरसात के बाद।
1: बरसात खत्म होगा तब धूप उपाएगा तब।
0: तो यानी आलू लगाने की तैयारी आप कब कीजिएगा?
1: वही आसिन कार्तिक।
0: आसिन कार्तिक में कीजिएगा, ठीक है। तो आलू के लिए तो जमीन ज्यादा अच्छा से तैयार करने का जरूरत पड़ता होगा, क्योंकि उसमें तो मिट्टी पूरा भुरभुरा रखना होता होगा, तब उससे मतलब आलू
1: अच्छे रहेगा।
0: हाँ, क्योंकि ये सारी सब्जियों को तो आप एक या दो बार जोत कर दी तो आपका हो जाता है, लेकिन आलू
1: पूरा सूखा रहना चाहिए,
0: सूखा हुआ रहना चाहिए, मिट्टी भुरभुरा रहना चाहिए, और उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता होगा। आलू के साथ सिर्फ आलू लगाती हैं या कुछ और भी लगाती
1: हैं? कुछ नहीं,
0: सिर्फ आलू लगाती हैं। बहुत सारे लोग आलू के किनारे किनारे कुछ और भी फसल लगाते हैं, वैसे आपने कभी लगाते
1: देखा?
0: नहीं। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आप महिला किसान हो के खेती का काम भी कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है जो सब्जियों का उत्पादन होता है वो बेचती भी हैं, और इतनी तरीके से एक्टिव कह लीजिए जागरूक हैं। तो आपने कार्यक्रम में हमारे साथ समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखा अभी बेस बात बतेलथिन अरी हल्थिन संगीता देवी, और इनकर से बातचीत कर लेथिन अलका कुमारी। तो सब्जी के उन्नत खेती करके बिक्री भी करो थी, और दूसरा बात है देखा अब हम बाजार के भाव के तने आओ कि भाई देखा आज के बाजार भाव का रहले है।
3: तो देखा आज के जो बाजार भाव है, लाल आलू मिले लगल हो 20 से 25 रुपए प्रति किलो।
2: हाँ।
3: और सफेद आलू 18 से 22 रुपए प्रति किलो। प्याज के दाम हो 20 से 30 रुपए किलो। फूलगोभी के दाम हो 30 से 40 रुपए प्रति किलो। पत्ता गोभी 25 से 30 रुपए प्रति किलो। पटल 25 से 30 रुपए प्रति किलो। भिंडी 20 से 30 रुपए प्रति किलो। और नेनुआ 25 से 30 रुपए प्रति किलो। और कद्दू के दाम हो 30 से 35 रुपए प्रति किलो।
2: देखा हरियर मरचाई के बात करिए तो भाई 60 से 70 रुपए प्रति किलो रहले हो। शिमला मिर्च हो 70 से 80 रुपए प्रति किलो। बीट है 35 से 40 रुपए प्रति किलो। सीम है 40 से 60 रुपए प्रति किलो। बीन है 50 से 60 रुपए प्रति किलो। और मुराय हो 30 से 35 रुपए प्रति किलो। धनिया पत्ते की बात करिए तो 100 से 120 रुपए प्रति किलो। आदी हो 120 से 140 रुपए प्रति किलो। खीरा है 20 से 25 रुपए प्रति किलो। टमाटर है 30 से 35 रुपए प्रति किलो। लाल साग और पालकी साग हो 30 से 40 रुपए प्रति किलो।
3: और देखा आज के जो मौसम हो, अधिकतम तापमान हो 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 24 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता हो गलो 81%।
2: और कल के बात करिए तो भाई देखा कल के तापमान रहते अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहते 24 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता के बात करिए पूर्वानुमान हो 83%।
3: बिल्कुल। और देखा अब हमने एक बात करबो कि आज के समय में कृषि बहुत आधुनिक तकनीक आ गेले हो।
2: हाँ हाँ।
3: प्राचीन तरीका से खेती के रूप अब बदल गेले है।
2: बिल्कुल।
3: अब देखा समय कम हो, मतलब आदमी कम हो जाए मेहनत। हाँ। करे वास्ते, तो इस आधार पे देखबा कि आप के समय में जो खेती बाड़ी जो ज्यादा हुए थे मशीन के द्वारा हुए थे।
2: देखा ना एक में का होने की जैसन के तू बतेला की मशीन हो, आधुनिक कृषि उपकरण आ गए है, ओकर में का हो सीड हो, ड्रिल हो, जीरो टिल सीड ड्रिल, पावर वीटर हो, रिपर, ये सब जो है ना, से सब जो है खेती बाड़ी के तकनीक हो और उपकरण है।
3: बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जरूरी हो अब एगो ड्रोन तकनीक आईले है उमेश भाई।
2: हाँ हाँ।
3: तो ये जो ड्रोन तकनीक है किसान भाई बहन वास्ते बहुत ही ज्यादा उपयोगी साधन है, मतलब कि बहुत सहायता करे। ड्रोन के सहायता से हमने क्या क्या कर सको ये कि उर्वरक और जो कीटनाशक है।
2: हाँ।
3: अगर हमने खेत में छिड़काव करना है जहाँ एक आदमी से कुछ ही दूर में होबे पड़े हेले दिन भर में, और
2: हाँ
3: फिर
2: हाँ।
3: उस इंसान के भी दिक्कत हो जाए कि कहीं ओकर पे लग तो नहीं जाए, तो ये ड्रोन तकनीकी जो हमने सहायता से क्या कर रही है कि बहुत ही कम समय में हमने के पूरा खेत में ओकर में ये जो उर्वरक और कीटनाशक है कि एक बराबर रूप से छिड़काव हो जाए। तो एक से सबसे ज्यादा बचत का हो जाए है, मजदूरी के बचत हो जाए है,
2: हाँ।
3: और फिर लागत के, जैसे मजदूरी के जो पैसा ज्यादा लगते हो तो में थोड़ा वो मशीन के उपयोग करे था कैसे तो समय या मजदूरी के बचत हो तो
2: हाँ।
3: और एक साथ में एक सबसे ज्यादा खुद के वास्ते जो फायदा है कि किसान के रसायन के सीधा संपर्क में ना

0: वो थी जेकर से उनकर जे खतरा रहे रसायन के ओकर से खतरा कम हो जाए। और एक साथ में तू जितना तरह के बतेला कि बहुत जे कृषि उपकरण हुआ है, सीड ड्रिल हो गलो, बीज रोपण करे वास्ते जीरो टिल सीड ड्रिल हो गलो, पावर वीडर हो गलो, रिपर हो गलो, हैप्पी सीडर हो गलो, मल्टी क्रॉप थ्रेसर हो गलो, तो ये सब जे अगर सारा जे मशीन है ये सब हमनी के काम के बहुत ज्यादा आसान करे है। जेकर से कहलवा की निराई हो गलो, गुड़ाई हो गलो, कटाई हो गलो या मराई हो गलो, मतलब हमनी के एक खेती में जितना तरह के काम हुए है वो एक ऐसा कम समय में और अच्छा से हो जाए।
1: एकर देखा एकर बात है ना कि हम इनके जो है ड्रोन जो सिस्टम है एकर में कहा है कि वह ये रोजगार के भी बहुत बढ़िया जो है से साधन है। देखा कि ड्रोन से जो है से तो कहला कि दवा के छिड़काव कम समय में, पानी के पटवन भी कर सको, बहुत तरह से है। और एकर में कहा है ना कि भाई देखा खेती के अधिक लाभ हो रही, सुरक्षित भी है और देखा कि टिकाऊ भी बना हुआ है। और देखा कि एकर में कहा है कि एकर में कहा है कि भाई देखा एकर से हम इनके जो बेरोजगार युवा थे भाई तो वो भी जो है से खरीद के एकरा और भाड़ा पर जो है से जो किसान भाई अपनी लीज पर जमीन लेके जो खेती बाड़ी कर लेते, तो कहा है कि भाई लीज पर जो है से जमीन में जो है ड्रोन के माध्यम से दवाई के छिड़काव और किसान भाई बहन के जो है से मदद भी कर सको दे।
0: तो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन हो, छोटा किसान सीमांत किसान जो थे जिनका अगर मशीन की जरूरत है तो से लेकर अपन खेती में प्रयोग भी कर सको थी और खेती के काम में लाभ ले सको थी। तो एक साथ कार्यक्रम किसान वाणी से विदा लेवे के भी समय हो गई है। तो हमरा अलका
1: और उमेश के अनुमति द
0: जोहार।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के अपन ही कार्यक्रम में स्वागत हैं। और अलका बहन दने से जोहार प्रणाम, और साथ ही उमेश भाई तो तोरा भी जोहार प्रणाम।
1: जोहार प्रणाम अलका बहन, और आज के कार्यक्रम में फिर से हम स्वागत करो। ये साथ ही साथ देखा कि हम इन बतियेबे कि देखा जे किसान भाई बिन खेती बाड़ी करो लगे लेन, और कई तरह से देखवा कि साग सब्जी लगे लेन बड़ी हथु कि मकई लगे ले तो देखवा कि बैंगन मरचाय लगवे था तो प्याज लगवे था तो देखा कहीं देखा ने कोकर में कहा है कि रोग व्याधि लग जा रहा है, कीट लग जा रहा है, तो ओकर से बचाव के भी हम इनके उपाय करना है।
0: बिल्कुल, यानी कि जे हमने फसल लगे लही है ओकरा हमने के ध्यान रखे वास्ते करना चाहिए कि का ओकर में रोग है। ओकर पहले हमेशा जब भी लगावो है कोई भी चीज उमेश भाई, तो बीज के हमने के उपचारित करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कि बीज के अगर उपचारित कर लेता तब तोरा सही हो तो।
1: हाँ हाँ, और एक में क्या है ना देखा कि सबसे पहले अगर मकई में तोरा जो है अगर कीड़ा मकोड़ा लग गया तो दवाई तो देखा अगर में दवाई छिड़काव करना भी बहुत जरूरी हो जाए। एक से क्या है देखा तोरा जो मकई के बाइल होने ओकर में जो है से नुकसान ना हो तो बेस्ट तरीके से जो है तोरा एकदम सुरक्षित रह।
0: बिल्कुल, अभी अपने जैसे बात करबे कि जो मकई में जैसे कुछ कुछ रोग रहो है, एगो तना गलन रहो है, दूसरा हो गलो पत्ती झुलसा हो गलो,
1: बिल्कुल
0: फिर हो गलो रस्ट हो गलो या डांग मिलियो हो गलो, तना गलन में का हो जाए है कि सबसे ज्यादा पौधा की जो तना हो जाए वो कमजोर हो के सड़े लगे है और फिर जाके गिर जाए है। तो एकरा बचाव वास्ते हमने के सबसे ज्यादा जरूरी रहे है खेत में जे जल निकासी, यानी एक बीमारी के कारण रहे है कि अगर हमने जहाँ लगेले है अगर वहाँ पे जल जमाव ज्यादा हो तो तना गलन रोग हो सकल हो। और ओकर में जो उपयोग हमने के करना चाहिए कि संतुलित उर्वरक के उपयोग करना चाहिए, और उसका सही जो ओकर वास्ते दवाई है ओकरा लगाना चाहिए। और साथ में जो रोगग्रस्त पौधा है जेकर में लगे थे जो पौधा में तना गलन रोग हो गए ओकरा वहां से हटा के एकदम अलग जगह मतलब हटा देना चाहिए।
1: देखा कि जैसन के तू बतेला ना कि तना गलन है पत्ती झुलसा है तो एकर में का देखवा कि जो है पत्ता जो है ना लंबा और भूरा हो जाए धब्बा हो जाए, और एकरा का है कि देखवा जब सूरज के प्रकाश मिलो ना तो ओकर से जो है वो प्रभावित हो जाए, तो कहीं ना कहीं देखवा ना कि तुहर मकई कमजोर हुई तो।
0: बिल्कुल,

0: दूसर बात है कि देखा डाउन वाई मिडल यू रोक वहेगो एकरो में जो है से पते में जो है ना पीला धारी धारी हो जितो और नीचे के जो है सफेद फुफुंदी हो जितो तो एकरो से जो है से हम इनके मकई जो है से काफी बर्बाद हो जाए है। तो एक खातिर हम इनके किसान भाई बहन के जो है तो बेस्ट जो है दवाई के जो है सबसे पहले प्रमाणित दवाई लेवल करिए और एक से जो है हम इनके समय पर छिड़काव कर देवे ताकि जो हम इनके अपन रोग से बचाव जा सको।
1: बिल्कुल, यानी कि जैसे पत्ती झुलसा हो गलो रस्ट जो जंग हुए में पत्ता में लाल भूरा रंग के छोटा छोटा जो धब्बा हुए लगे है एकर वास्ते हर चीज के फसल के अच्छा उत्पादन पावे वास्ते हमने के समय समय पर फसल के निगरानी करना चाहिए और ओकरा अगर किसी भी पौधा में बीमारी दिखाई देत है तो ओकर पे हमने के मतलब कृषि विशेषज्ञ के द्वारा बतवल जो दवाई है ओकरा ही प्रयोग हमने के करना चाहिए।
0: बिल्कुल, एक बात और कहल चाहे कि देखा जब दवाई छिड़काव के बात हम इन करोइए तो भाई देखा कि कोशिश करे के चाहिए कि देखा जैसे तोहरा जो है नाडेप खाद उगलो चाहे फिर नीम के जो पत्ता है ओकर जो है से दवाई बना के यानी कि जो है अगर तू दैविक जो है जैविक दवाई के छिड़काव कर ला तो कम से कम नुकसान होते। दूसरा बात है कि हम इनके ये ध्यान देना है कि जैसे बरसात के मौसम हो अगर दवाई छिड़काव करना है तो देख ला के धूप खिलल है कि नहीं, अगर बारिश होवे के तो संभावना न है। अगर तोरा दवाई छिड़काव के बाद अगर तुरंत बारिश हो गलो तो एक से कहे के बाद तुहरा जो दवाई छिड़के लग लो ओकरा असर कम हो जाए।
1: बिल्कुल, यानी हमने के ओकर भी समय पे ध्यान रखना चाहिए और हमने के देखना चाहिए कि स्वस्थ बीज के उपयोग करिए ओकर में संतुलित पोषण यानी ओकर में खाद उर्वरक जो भी दिए संतुलित मात्रा पे दिए और सब एक चीज और भी जरूरी है कि जल निकासी के उचित व्यवस्था सही व्यवस्था रखिए और एक जमीन के मतलब माटी के स्वस्थ रखे वास्ते हमने के फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी रहे है और एक फसल के उत्पादन हमने के 20 से वास्ते समय पर उकर रोग की पहचान करना और निदान करना भी
0: बहुत
1: ज्यादा जरूरी रहो है।
0: बिल्कुल, तो देखा हम इन कार्यक्रम में तो बना लिया और भी बातचीत करबे लेकिन अब सुनाइए कुछ जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: देखा अलका बहन, अब जो है जरूरी संदेश के बाद हमें जानकारी के धन्य चलो ये देखा कि खेती बाड़ी के साथ साथ जो है पशुपालन भी बहुत जरूरी हो। अगर तू पशुपालन कर ले है तो ओकर गोबर जो है किसान भाई बहन के लिए खेती कार्य में काम आ जाए और देखबा कि दूध दही जो है से मठा घी जो है किसान भाई बहन के लिए बहुत बड़ा जो है से एक खान पान की जरूरी है ताकि वो स्वस्थ रह सकते।
1: बिल्कुल, देखो पशुपालन काफी पुराना समय से चला आवे थे लेकिन अभी भी बहुत पशुपालक भाई हथी जो पशुपालन के काम करे थे और कोई अब नया नया भी जुड़े थी।
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में आज हमने की वो जानकारी लेकर एलही है कि पशुपालन में हमने के का बात के ध्यान रखना चाहिए और थीन प्रवीण कुमार उनका से बात कर लिया थीन उमेश रजक। तो सुना जाए जानकारी भरल बात,
0: सुना जाए जानकारी भरल बात। किसान भाइयों, हम समय समय पर अपने कार्यक्रम में ऐसे किसान, पशुपालक, मुर्गी पालक आदि कई ऐसे लोगों से आपका मुलाकात करवाते हैं जो कई क्षेत्रों में आज अपने स्वरोजगार को अपनाए हुए हैं। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं जहां एक पशुपालक हैं जो गौ पालन का कार्य करते हैं और हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका गौ पालन में क्या क्या देख रेख करते हैं, क्या इनका आवास प्रबंधन है, क्या खान पान में ये देखभाल करते हैं, कई बीमारियों का सामना होती है, इसे संबंधित हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार
3: जी। नमस्ते उमेश जी, आपको भी
0: जी। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और रहने वाले कहाँ के।
3: मैं रहने वाला तो कुमार टोली पारनाला हजारीबाग का हूँ।
0: अच्छा।
3: और मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी।
0: प्रवीण कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, अभी कितने दिनों से आप जो है पशुपालन का काम कर रहे हैं।
3: जैसा कि हमने 2001 से ये धंधा को पशुपालन गाय का काम कर

0: वाला हूँ।
1: अच्छा।
0: और ये मेरा काम बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए ये काम अभी मैं कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आपका 25 सालों का अनुभव है और हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आपके पास कितने गाय हैं?
0: अभी मेरे पास 5 गाय है और 4 बाछी है, तो मैं इसी का भी काम कर रहा हूँ।
1: तो हम शुरुआती दौर के विषय में हम बात करेंगे कि जब आप गाय खरीदे थे और शुरुआत किए थे, उसमें काफी कठिनाई हुआ होगा आपको।
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैंने एक गाय से लगभग 20 गाय बेचा भी है।
1: हाँ।
0: और अभी भी 5 गाय उसी का जनरेशन चल, तो मेरा एक ही गाय का ये एक्सपीरियंस है कि एक गाय से मैं इतना गाय किया हूँ, तो काफी। तो गाय ये सबसे पहले घर का निगेटिव दूर करता है गाय पालने से, और दूसरी चीज है कि आपको आर्थिक सहयोग भी मिलता है और शुद्धता दूध भी आपके घर के है, मक्खन भी आपके घर के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें लगभग एक गाय में कम से कम 10,000 रुपया प्रॉफिट आता है। तो अगर कोई भी हमारे किसान भाई अगर इस बिजनेस को या इसको स्वरोजगार समझ के काम करें,
1: हाँ हाँ,
0: तो 5 गाय में निश्चित है कि उनको 50,000 रुपया का
1: अच्छा
0: बेनिफिट आएगा होगा इसमें।
1: तो हम आगे जानना चाहेंगे कि जहाँ आप गाय रखते हैं, तो वहाँ का आवास प्रबंधन किस तरह से करते हैं?
0: वहाँ का आवास हम लोग साफ सुथरा रखना चाहिए गाय रखने के लिए, और कोशिश करना चाहिए कि गाय को समय समय पे मिट्टी पे निकालना चाहिए, घुमाना चाहिए। और गाय की बीमारी गंदगी से उत्पन्न होती है, जैसे कि हम लोग एक बीमारी का नाम सुनते हैं कि सबसे पहले बीमारी आने के पहले उसको देहात में इसे चिमोकन कहा जाता है, उस कीड़ा जब उसके शरीर में होगा तो अनेकों बीमारियों का शुरुआत होगी। तो पहले इसकी रोकथाम किया जाए कि पहले उस कीड़ा का ना होने दे, इसलिए गाय को रख रखाव में सफाई करना रखना है और खुला जगह हो और उसको समय समय से मिट्टी पे निश्चित है कि थोड़ा घुमाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आते हैं खान पान पे कि आप खान पान में क्या ध्यान रखते हैं?
0: सर, जो भी खान पान में, हम तो सब किसान भाई से आग्रह करेंगे कि ये नेचुरल खिलाएं, कोई आर्टिफिशियल नहीं दे। आर्टिफिशियल जो होता है सर, तो उसमें होता क्या है ना कि अनेकों तरह की केमिकल मिलाया जाता है। जैसा कि अभी सर आपको मैं बताऊं कि यूरिया खाद का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि आप सर देखा जाए कि अगर हाथ में रख के हम लोग यूरिया में पानी डालें तो हाथ गलाने का काम करता है सर। तो वह अगर हमारे गांव के खाद पदार्थ में मिल जाए तो सर निश्चित है कि हमारी गाय सही से नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ सर कि एक गाय मेरे घर में लगभग 14 बच्चे दिए हैं।
1: अच्छा।
0: तो सर गाय के अगर खान पान अगर हम नेचुरल रखेंगे ना सर, तो बीमारियां भी कम आएगी
1: जी।
0: और बीमारियां कम आएगी तो आपका पैसे भी डॉक्टर के में खर्च नहीं होगा। इसलिए सर हम तो सभी से कहेंगे कि ये नेचुरल में जाए, जैसा कि हमने गाय को खाना खिलाते हैं।
1: अच्छा।
0: प्रत्येक गाय 2 केजी चोकर, 1 केजी गेहूं दर्रा, 1 केजी चना चुन्नी, और सर उसको हम लोग मिनरल थोड़ा देते हैं।
1: अच्छा।
0: और कैल्शियम के जगह पर सर हमने उसका गुड़ का प्रयोग कर, जिसमें मेरा गाय का दूध एक गाय कम से कम सर दोनों टाइम मिला के 18 लीटर 19 लीटर के लगभग।
1: अच्छा।
0: देती है सर, ऐसा कुछ नहीं है मैं आर्टिफिशियल तो कुछ देता हूँ नहीं।
1: बिल्कुल, हम अपने पशुपालकों से कहेंगे कि जो आपने कहा कि यूरिया खाद, तो इन सबों से सावधान रहें ताकि अपने गाय को सुरक्षित रख सके। अब आते हैं कि बीमारी, खुरपका रोग है तो सर्रा रोग है, कई तरह के ऐसे रोग आते हैं जो हमारे पशुपालकों को समझने में देरी हो जाती है। जब तक उसका लक्षण पहचानते हैं या फिर चिकित्सक बुलाते हैं तब तक देर हो जाती है, तो उससे बचने के लिए तत्काल प्राथमिक उपचार क्या करें?
0: जैसा कि आपने बोला, आप भी जानते हैं कि जो नेचुरल होता है उसका दवा भी नेचुरल होता है। ये जितने भी सर, आज से कुछ दिन पहले हम लोग चले सर, तो क्या हमारे घर में हमारे पूर्वज गाय को कोई दवाई देते थे?
1: जी नहीं।
0: ऐसा करते थे क्या सर?
1: नहीं।
0: तो हम लोग क्या हो गए कि अभी जो है नेचुरल दवा को छोड़ के आर्टिफिशियल पर चल रहे हैं सर, इसलिए बहुत सारे डेयरी फार्म में हम लोग को कठिनाई आता है। लेकिन अगर हम नेचुरल में आ जाए, जैसे कि हम सर्रा की बात करें, तो सर्रा सर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उपचार है कि अगर गांव में आप

0: कि उसका अगर हम चाहें तो मक्खन भी बेच सकते हैं, दही भी बेच सकते हैं। सर सबसे बड़ी एक उपलब्धियां गाय में आती है सर, जो कि हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। उपलब्धियां दूध मक्खन दही तो सर हर घर का यूज है। ये और दूसरा हमारा जो उपला गोईठा जिसको बोलते हैं ना सर, अभी आपके ऑनलाइन सर 5 रुपए 3 रुपए पीस बेचा जा रहा है।
1: अच्छा।
0: सर सोचिए कि ये कितना बढ़िया बिजनेस है सर
1: जी।
0: कि कुछ गोबर के अगर हम उपला बना दें तो वो भी अगर हम मार्केट में बेचे सर
1: जी।
0: तो 2 रुपए पीस अगर ऑनलाइन 2-3 पास दे रहा है सर, तो मैं 2 रुपए भी बेचूंगा तो बिकेगा सर। तो इसलिए सर ये बिजनेस में कहीं कोई घाटा की जरूरत नहीं होता है सर, कहीं नहीं। हर कहीं है कि सर आपने किसी के बहकावे में, किसी के कहे में, अनेकों डॉक्टर के बातों में आके उनको डायरेक्ट आप जो है सर आर्टिफिशियल पे चले जाते हैं, इसलिए काफी बीमारियां होती है। आप नेचुरल में रहिए सर। जैसा कि अभी एक सुधा दाना चल रहा है, बाबा रामदेव का चल रहा है, तो सर क्या बना है
1: जी
0: ये तो मुझे पता नहीं है,
1: नहीं पता।
0: लेकिन सर गेहूं का दर्रा तो हम जानते हैं ना सर, आदमी भी खाता है,
1: ये तो प्योर स्वदेशी हो गया।
0: जी जी सर, तो गाय को जब स्वदेशी हम देंगे ना सर, जैसा कि मैं अपनी गाय के बात बताओ
1: जी,
0: कि अब 18 केजी गाय जो दूध देती है ना, तो अगर हम लोग कोई डॉक्टर से मिलेंगे तो उसको बोलेंगे मिनरल खिलाइए, तो इसको ये दाना दीजिए वो दीजिए, लेकिन आज 25 साल के दरमियान में मैंने कोई भी आर्टिफिशियल का प्रयोग नहीं किया और मैं कभी भी गाय में क्षति में नहीं पहुंचा हूं।
1: अच्छा।
0: और मेरा क्या, मेरे बच्चे तक हम ये अपने आप को देंगे कि भाई गाय जो है ना एक विपत्ति का बहुत बड़ा सहारा है।
2: यानी कि जो है हर घर में गौ माता की अगर पूजा हो, हर घर में जो है गौ पालन हो, तो एक स्वरोजगार का दरवाजा खुल जाता है और किसी भी तरह से नुकसान नहीं होता
0: जी,
2: है। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि गौ पालन से साल में आपका क्या आमदनी हो जाता है, और जो आपकी बात को सुन रहे हैं जो हमारे बेरोजगार युवा हैं जो दूसरे राज्यों में कम मेहनत पर कम मजदूरी पर काम करने चले जाते हैं, लेकिन अगर इन रोजगार को अपनाएं तो अपने घर में खुशहाल भी रह सकते हैं और आमदनी भी उनकी जो है अच्छी खासी होगी।
0: बिल्कुल,
2: एक संदेश के रूप में आप उनको क्या कहें?
0: बिल्कुल सही सर, हम तो हर युवा से हर लोगों से अपील करेंगे, विनती करेंगे कि एक तो आपके घर क्या ऊर्जा बढ़ाती है सबसे पहले, दूसरी आपकी आर्थिक में काफी मदद करती है। तो गाय एक माता भी है, जिस तरह से हम लोग अपनी माँ का दूध पीते हैं तो उसी तरह गाय के दूध से भी हमारे बच्चे पलाते हैं। और निश्चित है सर कि अगर ईमानदारी पूर्वक अच्छे मन से काम किया जाए तो निश्चित है कि महीने में अगर 3 गाय भी रखेंगे तो 30 से 35 हजार रुपए खाना होना खिला के सब कुछ करके ये प्रॉफिट आएगा सर, जो कि नामुमकिन है दूसरे बिजनेस में घर में रह के ये किया जा सकता है सर।
2: तो हम आशा करेंगे कि आपकी बात को जो सुन रहे हैं हमारे ग्रामीण श्रोता, किसान भाई, पशुपालक आपकी बात से लाभ उठाएंगे और जो बेरोजगार युवा है वो रोजगार की ओर अग्रसर होंगे। तो प्रवीण कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना महत्वपूर्ण समय देते हुए इतना बेहतरीन जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो देखा विजय, जानकारी सुने थे लिए कि पशुपालन करके कैसे वो अपन पशु के रखे थे अपन रोजगार के साधन बनवे थे। और ये हल्थी प्रवीण कुमार, उनके से बातचीत कर ली हल्थी उमेश रजक।
2: देखा भाई कितना बेस अपन अनुभव के बतेलथिन कि देखा पशुपालन करके भी जो है अपन आय के जो है मुनाफा कमा सको आदमी, अपन आर्थिक जो है स्थिति के सुधार सको है।
3: बिल्कुल। और उसके बाद देखा अभी हमने बात करवे कि मशरूम के बारे में, कि जो मशरूम जो है वो आज के समय में काफी काफी मांग रहो है।
2: बिल्कुल।
3: कि मशरूम के काफी डिमांड रहे कि होटल कहला, घर कहला, या बच्चा सबके कहला कि वो पसंद की चीज रहो है।
2: बिल्कुल।
3: तो मशरूम के भी हमने एक व्यवसाय वास्ते अपना सके लिए, लेकिन एक बारे में हमने आगे और भी बातचीत करवे मशरूम के बारे में।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अभी रुक के पहले हमने सुनबे एगो गीत, ओकर बाद फिर हम एक बात करवे मशरूम के बारे में।
2: देखा हमर मन के तो बात कर दे ललका बहन के, हमर मन में भी हलो की देखा किसान भाई बहन के पहले मनोरंजन करा लो, ओकर बाद जो है उनकर से कि मशरूम के उत्पादन से हम इनके रोजगार के रूप में का जो है से उपाय हो सको है। तो आओ सुनो ये एगो बढ़िया लोकगीत।

0: तो देखा गीतनाथ के बाद हम जो है जानकारी के देने चलो ये कि हम जो है किसान भाई बहन देखा बहुत अधिक तौर पर जमीन रहे के बावजूद भी खेती बाड़ी नहीं करे था और किसान अति कि भाई एकदम जमीन ना रहे के बाद भी खेती बाड़ी करो थी भाई।
1: बिल्कुल
0: तो ये खेती हो गलो मशरूम की खेती,
1: यानी जेकर पास जगह अगर लगे तो कि हमारे पास खेत बाड़ी ना है ज्यादा और हमारा खेती करना है तो तोर एक या दो कमरा में भी तोर मशरूम की खेती कर लेबा और ओकर तोर रोजगार बना सकल है। और एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा श्रम की जरूरत नहीं पड़ो है, अगर महिला किसान भी चाहती तो वो भी आराम से कर सको हथी और ये कम समय में ज्यादा पैसा हुआ है।
0: और देखा कि एकर जो बाजार में जो है से मांग भी है और अगर जान जैसुन के भाई तू अपन घर में खेती कर लिया तो तुहर घरे से भी ले जितो।
1: बिल्कुल
0: ये इतना बढ़िया और इतना जो है कहा कि टेस्टी हुआ है और फायदेमंद भी है। कहा कि देखा कि कई तरह के डॉक्टर भी सलाह दो है कि मशरूम खाना चाहिए तो ओकर से भी फायदेमंद है और देखा कि एकर में बढ़िया पैसा भी मुनाफा हुआ है और देखवा कि बड़ा बड़ा शादी पार्टी में चाहे बड़ा बड़ा होटल में ये सब जो है एक मांग हुआ है भाई।
1: बिल्कुल यानी कि हमने के मशरूम की खेती भी करके हमने के अपन रोजगार के साधन बेहतर तरीका से बना सको है। और देखा बारिश और गर्म मौसम में हमने ऑयस्टर मशरूम लगा सको है और जब ठंडा के मौसम हो तक बटन मशरूम की खेती हमने कर सको
0: है। बिल्कुल तो देखा कि इस तरह से हमने मशरूम की खेती करके अपन जो है मुनाफा कमा सको है और घर परिवार के आर्थिक स्थिति के मजबूत कर सको है। तो देखा आज खेती बाड़ी से जो है हम इनके विदा लेवे के भी समय हो गए हो तो कहे न कार्यक्रम खेती बाड़ी से हम उमेश के
1: और अलका के
0: अनुमति द
1: जोहर।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी की हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: दर्शकों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। एसआईआर अभियान शुरू होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे संताल क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। वहीं झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने देना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी आज से एसआईआर के तहत एन्यूमरेशन चरण की शुरुआत हो गई है। पहले दिन उपायुक्त मनीष कुमार ने चाईबासा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे बीएलओ का सहयोग करें। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज भूमि बोध पर एक दिवसीय विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा ने कहा कि समाज में होने वाले 90% विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। गढ़वा जिला पुलिस ने शहर के रंका मोड़ के पास गुप्त सूचना पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 51,820 रुपए नकद, 5 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर आज चाईबासा में विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा में आज हुल क्रांति दिवस के अवसर पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उप विकास आयुक्त श्रीकांत विस्पोते और झामुमो जिला अध्यक्ष प्रेमानंदन मंडल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर गोड्डा कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एक विशाल रैली निकाली और शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए युवाओं को संबोधित कार्यक्रम।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूं अनामिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, इतिहास हमें केवल बीते समय की याद नहीं दिलाता, बल्कि संघर्ष, साहस और स्वाभिमान की प्रेरणा भी देता है। आज हम बात करेंगे हूल दिवस की, जो भारत के आदिवासी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हर वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिदो मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने किया था। इन वीरों ने अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। हूल शब्द का अर्थ है क्रांति या विद्रोह। यह केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि अन्याय के विरुद्ध सम्मान और अधिकार की लड़ाई थी। हजारों संथाल आदिवासियों ने इस संघर्ष में भाग लिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। हूल विद्रोह ने अंग्रेजी शासन को यह एहसास कराया कि भारत के आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इस आंदोलन का प्रभाव आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में भी देखने को मिला। आज हूल दिवस हमें यह संदेश देता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। साथ ही हमें अपने इतिहास, संस्कृति और उन महान वीरों के बलिदान को याद रखना चाहिए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष किया। आइए हूल दिवस के अवसर पर हम सिदो कानू और उनके साथियों को श्रद्धापूर्वक नमन करें तथा न्याय, समानता और एकता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए?
4: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, कहते हैं तकनीक एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मालिक। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ किस चीज की ओर बढ़ता है? मोबाइल। दिन भर चैट, रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशंस और रात में भी स्क्रीन के साथ ही दिन खत्म होता है। कब दोस्तों जरूरत आदत में और आदत लत में बदल जाती है, इसका एहसास ही नहीं होता। दोस्तों, मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। पढ़ाई, जानकारी, रोजगार और दुनिया से जुड़ने का बेहतरीन माध्यम भी दिया है। लेकिन जब इसका उपयोग सीमित न रहकर हमारी दिनचर्या, पढ़ाई, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगे, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। दोस्तों, तकनीक का सही उपयोग हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन इसका अति उपयोग हमें पीछे भी धकेल सकता है। आज का जो दौर है वो डिजिटल युग का दौर है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया है। एक क्लिक में जानकारी, पढ़ाई, मनोरंजन, दोस्तों से बातचीत और दुनिया की खबरें हमारे सामने होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल का हम इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए करते हैं, कहीं वही मोबाइल हम पर हावी तो नहीं हो गया? आज कई युवा घंटों तक सोशल मीडिया पर रील्स देखते रहते हैं, हर कुछ मिनट पर फोन चेक करते हैं और बिना वजह भी मोबाइल हाथ में उठा लेते हैं। और धीरे धीरे यह आदत दोस्तों एक ऐसी लत बन जाती है जो समय, पढ़ाई, रिश्ते, नींद और मानसिक स्वास्थ्य सभी पर असर डालने लगती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस लत की पहचान कैसे करें, इसका सही और संतुलित उपयोग कैसे करें, ताकि मोबाइल हमारे जिंदगी का सहायक बने, मालिक नहीं। साथियों, मोबाइल और सोशल मीडिया अपने आप में बुरे नहीं हैं। असली बात यह है कि उनका उपयोग संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो। हम स्क्रीन टाइम तय करें, बिना जरूरत बार बार फोन देखने की आदत छोड़ें, परिवार और दोस्तों के साथ भी समय दें, उनके साथ भी समय बिताएं, खेल कूद, पढ़ाई और अपनी रुचियों को भी पर्याप्त समय दें। दोस्तों, जब तकनीक हमारे समय और जीवन पर नियंत्रण न करके हमारे काम को आसान बनाए, तभी उसका सही उपयोग माना जाएगा। तो दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल करें लेकिन न मोबाइल को अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें।

0: दोस्तों, चल रहा है प्रोग्राम युववाणी और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए सुनवा रहे हैं आपको ये पुनर्प्रसारित बातचीत। विषय है सफलता के लिए समय तालिका का कितना महत्व।
1: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वरीय शिक्षिका श्रीमती विम्मी प्रियदर्शनी जी से, जो अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल हजारीबाग में कार्यरत हैं। विम्मी जी हमें आज जानकारी देंगी एक आदर्श विद्यार्थी के जीवन में समय का क्या महत्व है इस विषय पे। तो सबसे पहले विम्मी जी, आपका इस कार्यक्रम में हम करते हैं बहुत बहुत स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार
1: विम्मी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफलता के लिए कर्म के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है, इस बारे में आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: जी हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी के जीवन में समय प्रबंधन बहुत महत्व रखता है। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं
1: जी।
2: और समय का प्रबंधन के लिए उन्हें सुबह सोकर उठने से लेकर के रात के सोने समय तक के लिए एक समय तालिका बना लेनी चाहिए। कितने बजे तक में वह कितना काम कर सकते हैं, इस तरह से अगर वह अपना तालिका बनाए और उसमें वह अपने लिए पढ़ाई के लिए कितने समय होने चाहिए, सफाई स्वच्छता के लिए कितने समय देने चाहिए तथा अपने रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए और समाज की सेवा के लिए कितने समय देने चाहिए, इस तरह से वह सारे समय का प्रबंधन करें, सारे समय को बांट दें और समय का प्रबंधन करें तो वो एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
1: जी। विम्मी जी, उचित समय पर यदि कोई विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं तो हमेशा फलदायी होता है, इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे छात्राओं?
2: जी हाँ, ये भी कहना बिल्कुल सही है कि उचित समय पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या होगा।
1: जी जी,
2: तो इसलिए समय रहते ही हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। हर एक समय, हर एक पल बीतता जा रहा है जिसका हमें बोध नहीं होता है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता है कि हम हर एक क्षण, एक पल, एक समय खो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हर एक समय को हम सदुपयोग करें। सदुपयोग समझना बहुत जरूरी है कि सदुपयोग, समय का सदुपयोग क्या होता है।
1: ये बहुत जरूरी है।
2: समय का सदुपयोग में सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताब की ज्ञान तो जरूरी है, वह तो किताब की ज्ञान से तो सिर्फ उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। किताब के ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें अपने व्यवहारिकता में कैसे ला सकते हैं, हम उन चीजों को, जो चीज हम किताबों से सीखते हैं उनको हम व्यवहारिकता में कैसे अपने जीवन में उपयोग करें, अगर हम इस तरीके से सीखेंगे तब हम एक सफल विद्यार्थी हो सकते हैं
1: जी। जो व्यक्ति उचित समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं विमी जी, उनकी सफलता संदिग्ध ही रहती है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
2: हाँ, ये सही है कहना कि उचित समय पर तैयारी नहीं करने पर सफलता संदिग्ध रहती है। उचित समय कौन सा समय है जिसे हम उचित समय कहेंगे
1: जी, ये जानना बहुत जरूरी है।
2: ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय है जो उचित समय है। कोई कहता है शाम का समय हमारे लिए उचित समय है, कोई कहता है हमारे लिए रात का समय उचित समय है। नहीं, हमारे लिए उचित समय जो अभी वर्तमान का समय है वही हमारे लिए उचित समय है, और इस वर्तमान समय को ही हमें अपने काम में लगाना चाहिए। हमें अपनी अध्ययन के लिए और अध्ययन से प्राप्त किए हुए ज्ञान को व्यावहारिकता में लाने के लिए हमें लगाना चाहिए, तभी हम एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, अन्यथा हमारी सफलता भी संदिग्ध ही रहेगी
1: जी। सफलता के लिए लक्ष्य तय करना भी जरूरी है ताकि हम अपनी मंजिल तक सही समय पर पहुंच जाएं। इस संबंध में भी आप थोड़ी जानकारी दे दें विद्यार्थियों को।
2: सफलता के लिए सही समय पर हमें अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, चारों ओर हजारों तरह के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अपने लिए अवसर वही ढूंढना है जो अवसर हमारे लिए उचित है, और हमें उचित अवसर का उपयोग करना चाहिए, तभी हम सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। लक्ष्य का तय नहीं करने से हम मार्ग से भटक सकते हैं। हमें कभी ये मार्ग कभी वो मार्ग अलग अलग रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन हमें एक ही मार्ग पर चलना चाहिए जो हमारा लक्ष्य हो। उसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पीमी जी, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में आप कुछ सलाह दें?
2: विद्यार्थी हमारे आज के दौर में, सही बात है कि आज के दौर में वो शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कई तरह की चीजें परोसी जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई तरह की चीजें परोसी जा रही हैं, और वो जो चीजें उन्हें परोसी जा रही हैं, जो उन्हें बहुत लालायित कर देती हैं, और वह अबोध बालक होते हैं जिन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह गलत रास्ते की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम हो जाता है। उन्हें लगता है शिक्षा तो सभी ले रहे हैं, लेकिन मनोरंजन करने का यही एक समय है, और वह अपने माता पिता से छिप करके, अपने शिक्षक गणों से छिप करके, वह अपने मनोरंजन के लिए ज्यादा समय देते हैं, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए ज्यादा समय दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए, शिक्षा पहले है, सबसे जरूरी है कि हम आधार किसे बनाए। आधार अगर हमारा ना होगा तो हम उसके ऊपर महल नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आधार हमें सबसे पहले बनाना है। आधार बनाने का मतलब है सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा अगर हमने ले लिया तो फिर हम आगे उसके ऊपर कई तरह की इमारत खड़े कर सकते हैं।
1: जी,
2: इसलिए ये जरूरी है कि पहले शिक्षा लें, उसके बाद ही किसी दूसरे लक्ष्य की ओर अपना ध्यान भटकाएं।
1: जी बीमी जी, कुछ और सवाल है जिससे मैं पूछना चाहूंगी। शिक्षा के संदर्भ में समय का क्या महत्व है, इस बारे में आप कुछ जानकारी दें?
2: शिक्षा के संबंध में समय का बहुत महत्व है। अगर यूं कहें तो हर एक मामले में समय का महत्व होता है, लेकिन शिक्षा के मामले में समय का बहुत महत्व होता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा का जो समय है वह सीमित समय है।
1: जी बिल्कुल,
2: एक सीमित समय तक ही हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन निर्वाह के कार्य में लग जाते हैं और अलग अलग कार्यों में हमारा ध्यान चला जाता है, हम दूसरे कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। और आज के दौर में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर शिक्षा के हम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आज लोग अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे अंक के साथ अपने प्रगति को दिखा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसके साथ समय को सही प्रबंधन करें, समय का सही प्रबंधन करें, और समय के साथ वो अपना तैयारी करें, तालमेल बिठा करके चलें, उसमें तभी वह सफल विद्यार्थी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा के संदर्भ में समय का बहुत महत्व है, इस बात को विद्यार्थियों को समझना होगा, है ना, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को इस संदर्भ में क्या आत्म मंथन की आवश्यकता है?
2: हाँ, यह बिल्कुल जरूरी है। आज के दौर में हर एक विद्यार्थी को आत्म मंथन की आवश्यकता है। इसलिए आत्म मंथन की आवश्यकता है क्योंकि हर एक विद्यार्थी की योग्यता अलग अलग होती है।
1: जी जी।
2: तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में किसी विषय पर आगे चल रहा है तो मैं भी उसी विषय पर आगे चलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्ममंथन करके देखें कि हमारे लिए हमारी योग्यता किसमें सबसे अधिक है, और हमारी योग्यता जिसमें सबसे अधिक है हमें उसमें ही ज़्यादा काम करना चाहिए और अपनी योग्यता को दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्ममंथन की ज़रूरत इसलिए भी है
3: जी।
2: कि विद्यार्थी शिक्षा का महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें

0: कई बार शिक्षा बोझ के समान लगती है या आदेश के समान लगती है। उन्हें लगता है कि शिक्षा सिर्फ माता पिता का आदेश है जिस कारण से शिक्षा लेनी पड़ती है, या शिक्षकों का बहुत दबाव बना रहता है इसलिए शिक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, ये आत्ममंथन करनी चाहिए उन्हें कि शिक्षा की आवश्यकता कहाँ है, कौन से जगह पे हम बिना शिक्षा के हम कौन से जगह पे खड़े हो सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं। अगर हम अपनी एक पहचान भी बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा का महत्व समझना चाहिए।
1: जी, अच्छा, अंत में एक सवाल और भी हम पूछना चाहेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थियों के शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, तो इसके लिए आप किसे उत्तरदायी मानती हैं?
0: कोरोना काल में तो सच पूछा जाए तो विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ जाता है। जहाँ पर विद्यार्थी आमने सामने शिक्षक के सामने बैठ करके पढ़ते हैं
1: जी।
0: और अपनी हर जिज्ञासा को पूरी करते हैं, ऑनलाइन में शायद वह उतने स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं।
1: जी।
0: इसके लिए उत्तरदायी तो ये कोरोना को ही हम कहेंगे
1: जी।
0: और हम किसी और को कह नहीं सकते हैं। इसमें किसी शिक्षक का कोई दोष नहीं है, विद्यार्थियों का दोष नहीं है, दोष तो हम इस कोरोना को ही कहेंगे। यह एक क्या कह सकते हैं हम इसे, यह एक महामारी आई है और महामारी के चपेट में सभी लोग आए, जैसे व्यवसायी लोगों का व्यवसाय पे फर्क पड़ा है उसी तरह से विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों को जितनी अध्ययन होनी चाहिए थी एक साल में उसका 50% ही वो अध्ययन कर पाए हैं।
2: और दोस्तों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम युवाणी से दीजिए अपनी दोस्त अनामिका को अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:29। आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच पहले सेमीफाइनल मैच का द ओवल लंदन से आंखों देखा हाल। श्रोताओं, मैच के दौरान न्यूज ऑन AIR ऐप पर विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारण किए जाएंगे।

0: रविंदर जी
1: आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं क्योंकि जो सेकंड बैटिंग में 10 बार जो लिया,
2: जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक इस तिमाही के आखिरी कारोबारी सत्र में लगभग 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 76,479 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 81 अंक लुढ़ककर 23,866 पर आ गया। हालांकि विस्तृत शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1% का उछाल आया। अच्छी शुरुआत के साथ बाजार खुले, लेकिन जल्द ही लड़खड़ा गए और सत्र के अधिकांश समय लगभग स्थिर दायरे में कारोबार करते रहे। आखिरी घंटे में उतार चढ़ाव बढ़ गया क्योंकि मासिक निफ्टी वायदा और विकल्प की एक्सपायरी के कारण सूचकांकों पर दबाव आया।
3: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड द फाइनल ट्रेडिंग सेशन ऑफ द

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: शुभ मित्रों, हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
1: आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान। 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक हुल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल। झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पिंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे। 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आज से आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद मैदान में उतरकर इसकी लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: झारखंड निर्वाचन आयोग इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड में है। राज्य भर में SIR अभियान का शंखनाद हो चुका है। पहले ही दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी के तोरपा का दौरा कर BLO के साथ समीक्षा बैठक की। प्रशासनिक मुस्तैदी का ये दौर कई जिलों में दिखा। गढ़वा में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमिरेशन फॉर्म वितरण की शुरुआत की। सरायकेला खरसावा में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, तो वहीं लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार और SP सादिक अनवर ने बूथों का औचक निरीक्षण किया। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान को गति देने के लिए रामगढ़ जिले में #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बार BLO ऐप के माध्यम से डिजिटल एंट्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में प्रेस वार्ता में बताया कि वर्तमान में राज्य में 2,64,63,236 पंजीकृत मतदाता हैं। इस अभियान के लिए कुल 31,892 BLO को लगाया गया है, जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में एक भी पात्र वोटर नहीं छूटेगा।
2: 82.10% मैपिंग हुई। अभी एन्यूमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का

0: कुछ छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं, कितना मैपिंग हुआ उसका भी दो स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ यहाँ पर मैं भी फील्ड में जाकर देखा था, उसमें कुछ यहाँ पर बाकी है, कुछ यहाँ पर गलत, इसलिए दो स्टेज में वेरिफिकेशन होगा, वो प्रक्रिया शुरू हो गया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानू सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि हूल दिवस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और अटूट भावना का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा देशवासियों को नई ऊर्जा प्रदान करती रहेगी और प्रेरित करती रहेगी। झारखंड में आज ऐतिहासिक हूल दिवस के मौके पर अमर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष हमेशा समाज को प्रेरणा देता रहेगा।
2: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानू जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
1: इधर हूल की ऐतिहासिक धरती भोगनाडीह को लेकर सियासत भी गरमाई रही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भोगनाडीह में सुरक्षा प्रतिबंधों और ग्रामीणों से बॉन्ड भरवाए जाने को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।
3: इस सरकार इस लड़ाई का इतिहास को मिटाना चाहती है, जो गठबंधन सरकार आए, जो मैं कांग्रेस आदमी भी, अरे जिस मट्टी से, जिस गांव से स्वतंत्र का बिगुल बजा, क्रांति का बिगुल, आज उस गांव को स्वतंत्र नहीं है।
1: इधर भारतीय जनता पार्टी ने आज हूल दिवस के मौके पर रांची सहित राज्य के सभी मंडलों में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रांची के सिद्धो कान्हू पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने वीरों को नमन किया। हजारीबाग में आज हूल दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव टी राजा और राज्यसभा सांसद पी संतोष ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए रणनीति साझा करते हुए राज्य की 7 लोकसभा और 30 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर में विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ हैं और शासन पूरी तरह विफल है।
4: मानसू का हत्या जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। झारखंड के पुलिस के वैन से निकाल करके अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पर चाकू से गोद गोद करके मार, आप समझ सकते हैं जमशेदपुर जो शांति प्रिय जिला के रूप में जाना जाता था, आज जमशेदपुर का ये हालत है, तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या हाल है।
1: इधर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए झामुमो नेत्री और राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि विपक्ष आगामी चुनावों को देखते हुए बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है।
5: भाजपा के यहाँ ये स्वभाव है आरोप लगाना। अभी हाल के दिनों की बात करती हूँ, रांची में जब आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ तो कितनी जल्दी पुलिस ने हमलावर को पकड़ा, जो कि शायद भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कभी इतनी जल्दी इतनी त्वरित कार्रवाई

0: थी। तो उसी तरह से हर मामले में यहाँ की पुलिस लगातार सक्रिय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए।
1: राज्य को कल 4 नए सूचना आयुक्त मिलने जा रहे हैं। लोक भवन के दरबार हॉल में सुबह 11:30 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाएंगे। कार्मिक विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 16 नेक नागरिकों को सम्मानित किया गया। चाईबासा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इन गुड समैरिटन्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इन नागरिकों ने सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को गोल्डन आवर के दौरान अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। समिति ने अब हर महीने ऐसे 5 नेक नागरिकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची, लातेहार, लोहरदगा और खूंटी सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 और 2 जुलाई को राज्य भर में भारी बारिश का दायरा और बढ़ेगा। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। स्वर्ण पदक विजेताओं में इटाशा कपूर, अनाया खलखो, विशाखा थापा और पलक साहू शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान। 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक होल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल। झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे। 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में

0: अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले के ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों को भी अब रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इस क्रम में मरकच्चो प्रखंड के नावाडी स्टेशन पर गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। 17 जून को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नावाडी स्टेशन पर रुकने के बाद गोड्डा एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नावाडी स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित होने से डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के लोगों का अब सीधे दिल्ली से संपर्क हो गया है। यहाँ से दिल्ली आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि
2: कोडरमा लोकसभा की बात करें तो चारों ओर से रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत है। यह वाराणसी से लेके सीधा रामपुर हाट तक, यानी कि एक बहुत एक ये धार्मिक एटीएस सर्किट के रूप में कि बाबा धाम को भी जोड़ते हुए इसी रूट से और उसमें बासुकीनाथ तारापीठ होते हुए रामपुर हाट तक ये ट्रेन जाए, एक नई ट्रेन, तो उसको लेकर भी माननीय रेल मंत्री जी को हम लिखे हैं।
1: रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए फेमस कोडरमा के झूमरी तिलैया शहर को केसरिया कलाकंद के जरिए एक नई पहचान मिली है। राज्य के 11 विशिष्ट उत्पादों में एक कोडरमा के केसरिया कलाकंद को भी जीआई टैग मिला है, जिससे कोडरमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कोडरमा का केसरिया कलाकंद राज्य

0: का एकमात्र खाद्य पदार्थ है जिसे जीआई टैग मिला है। केसरिया कलाकंद को जीआई टैग मिलने से न सिर्फ कलाकंद से जुड़े व्यवसायी उत्साहित हैं, बल्कि आम लोगों में भी इस बात की खुशी देखी जा रही है।
1: बहुत ही खुशी की बात है कि कोडरमा जिला का कलाकंद, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं, उसे एक जीआई टैग मिल गया है। और मैं बता दूं कि झुमरी तिले कोडरमा को इस मिठाई के वजह से जाना जाता, काफी अच्छा टेस्ट है। मेरे भाई जो अमेरिका में रहते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार जो दुबई में रहते हैं, वो भी जब फोन पे चर्चा करते हैं तो कलाकंद की चर्चा करते हैं, कोडरमा आते हैं तो कलाकंद खाते हैं। तो इसका जो टेस्ट है, मैं बता दूं कि और कहीं नहीं मिलता है।
0: महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए कोडरमा पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एक ही दिन में दो महिलाओं के साथ चैन छिनताई की घटना को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए कोडरमा पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा है। एसपी कुमार शिवाशीष ने मंचलों और महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीसी एक्ट भी लगाया जा सकता है।
2: आप लोग के थ्रू एक मैसेज देना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार महिला सुरक्षा हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि किसी भी मंचले को ऐसा लगता है कि चेन स्नैचिंग, छेड़खानी या महिला के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार वो करेगा और जब बच जाएगा तो इसमें कोई स्कोप नहीं रहने वाला है। हम लोग इस तरह के बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो भी लीगल मीन्स होंगे सारे परस्यू किए जाएंगे, जितना दिन होगा जेल में रखेंगे, जरूरत पड़ेगा सीसीए करेंगे, और जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जेल से निकलने के बाद भी पुलिस रेगुलर सत्यापन करेगी, ऐसा कर देंगे कोडरमा में रहना उनका दूभर हो जाएगा। तो हमारा आपके थ्रू यही मैसेज रहेगा कि यदि कोई मंचला ऐसा सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, और जिस हद तक रह सके महिलाओं के हम लोग को सम्मान करना है, महिला के विरुद्ध अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ क्राइम किया रहेगा तो उसको बिल्कुल बता।
0: पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने छीनी गई सोने की चैन और घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
3: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।
4: एक भी विकेट गवाया नहीं, एक अच्छी बल्ले पासों की एक सॉलिड फहरिस्त है। इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन, 5 के 5 मैचेस जीते उन्होंने।

0: ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना

0: प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

मोहम्मद रफी की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कार्यक्रम है फिल्म संगीत और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए अब सुनवा रहे हैं आपको प्रोग्राम में अगला गाना। फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड, आवाजें मुकेश और शारदा की।

मुकेश की आवाज में आवारा फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत ही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। रात के 11 बजने वाले थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10। आज का प्रसारण यहीं तक। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।